नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है।

0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आत्मा का वास्तविक आलोक बाहरी वैभव में नहीं अपितु अंतःकरण की निर्मलता में प्रकाशित होता है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। रामचरितमानस गान में आप सुन रहे हैं किष्किंधा कांड भाग 272 आज प्रसारित होगा। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:45 पर और पुनः शाम को 6:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं वर्षा चौमासा कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, इसका भाग 6 प्रसारित होगा। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। भूले बिसरे गीत सुबह 7:00, 7:30 पर हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की, और ये कार्यक्रम आप पुनः दिन में 2:00 सुनेंगे। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार विशाल भारद्वाज पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की है और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में सुनिएगा लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग पहला, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की, सुबह 10:00। ग्यारह बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3:00 सखी सहेली के अंतर्गत सुनिएगा लुप्त होती पारंपरिक कलाएं, कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलाक्कयील देवकी अम्मा पर्यावरणविद की कहानी और मुझे कुछ कहना है वो चिट्ठियों का जमाना, उपयोगी टिप्स बारिश में घर की सफाई। संवादक हैं मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4:00 हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 5:00 छाया गीत, तराने नए पुराने, 5:30 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान। 8:00 हवा महल में सुनिएगा प्रहसन खुसुर फुसुर, लेखन सोमनाथ नागर का है, निर्देशन कमल दत्त का। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00। दस बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर और 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान किष्किंधा कांड भाग 272।

सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बाल्य पुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम

वर्षा चौमासा प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत वर्षा चौमासा।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों नमस्कार। शुभा जी आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत कल आप बता रही थी कि राग बिहाग में तीज का जो पद
1: जी ख्याल की बंदिश

0: के रूप में तो इसे सिखाया ही जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे बंदिश की ठुमरी कह के भी गाते हैं। तो आप देखिए, एक ही पद को ख्याल गायक भी गाते हैं, बंदिश की ठुमरी भी कह के गाया जाता है, और भक्ति पद भी है, यानी एक तरह से इसे भजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि मंदिरों में राग सेवा के दौरान गाया जाता है।
1: जी,
0: वर्षा काल में जितनी तीज के साथ हम ये भी कहते हैं कि तीज त्योहार,
1: जी बिल्कुल,
0: तो और भी त्योहार आते हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे ना,
1: जरूर जरूर करेंगे।
0: लेकिन आज आप
1: क्या क्या नहीं किया देखिए श्रृंखला, हमने शादी करा दी, लग्न लगवा दिया, फिर तीज मना ली, तो सब कुछ करेंगे धीमे धीमे।
0: तो आज आपने क्या सोचा है?
1: मैं सोच रही थी कि तीज त्योहार की बात चल रही है, तो आपने कहा कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं अलग अलग जगहों पे तीज का भी मनाना, थोड़ा सा फर्क इधर उधर होता हो, लेकिन मूल रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक और पद मुझे मिला, वल्लभ संप्रदाय में भी गाया जाता है, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें भी, कुछ गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि में के मंदिरों में भी ये गाया जाता है, और ये एक संग्रह में मुझे मिला जिसमें कि मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में इसे दिया गया है। और सिंधारा वो होता है, वो जो उत्सव मनाने के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, शगुन के रूप में जो साड़ी चूड़ी श्रृंगार का सामान इत्यादि दिया जाता है वो एक सिंधारा होता है, और सब लोग मिलके झूले पे बैठ के पकवान खा के एक मौज मस्ती का त्योहार ये है। वो मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में मुझे ये मिला, और इसे मैंने तिलंग राग में निबद्ध करके गाने का प्रयास किया है। ये ख्याल के रूप में नहीं है, ना कि ठुमरी के रूप में है, मेरी चेष्टा ये रही है कि जो साहित्य है उसमें जो एक मस्ती है, एक अल्हड़पन है और एक निवेदन है, वो प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो आपको बोल सुनाऊं थोड़े से?
0: बोल भी सुनाइए और तिलंग का रूप भी थोड़ा समझाइए।
1: जरूर जरूर। तो ये खमाज जो थाट है उसका एक राग है ये, और इसमें ठुमरी इत्यादि उपशास्त्रीय संगीत के अन्य गीत प्रकार इसमें काफी मिलते हैं
0: जी।
1: तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है।

0: सा ये तिलंका स्वरूप माना जाता है और इसी में मैंने ये पद इसको ढालने की कोशिश की
1: तो है। पद भी बताइए बोल।
0: पद कुछ इस प्रकार है, मैया अब हिंडोर गढ़ावो।
1: वाह, सावन के झूले पड़े।
0: हाँ, तो माता से अनुरोध है कि अब आप झूला डलवाइए, हिंडोरा गढ़वाइए। मैया अब हिंडोर गढ़ावो, लेकिन ऐसा वैसा नहीं कि बस ऐसे ही कहीं एक टायर लगा के जैसे बंद जाता है, वैसा नहीं। सोनी सुघर बुलाए नगर के, हाँ? यानी जो शहर का प्रतिष्ठित सुनार है, हाँ? उसको बुलाइए आप।
1: हाँ, नगर का।
0: हाँ, हाँ, सोनी सुघर बुलाए नगर के रतन अमोल जड़ावो। तो रत्न जटित हिंडोला,
1: हिंडोले में।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। और उसके लिए बाकी तैयारी कैसी होगी, क्योंकि हाँ? झूले पे यूं ही हम ऐसे फटे हाल तो नहीं बैठ जाएंगे। तो गहरे रंग चुनरी सारी, छीपन पे जो रंगावो, विशेष रूप से उसे छपवाया जाए, रंगवाया जाए, ऐसी साड़ी आप गहरे रंग की तैयार करवाइए। और केवल मेरे लिए नहीं, कन्या गोप जिती मो साथिन,
1: वाह वाह,
0: सादर सब पहिरावो।
1: क्या बात है। हाँ,
0: तो सब जो कन्याएं हैं, मित्र हैं, सहेलियां हैं, सब उनके लिए गहरे रंग की विशेष छपाई के साथ वो साड़ी आप तैयार करवाइए। ये सावन मन भावन रानी, मोको उबटी नहावो। तो उपटन लगा के जो स्नान होता है वो बहुत जरूरी है। उबटी नहावो, सब सखियन में सुंदर लागो, रच सिंगार बनावो।
1: वाह, सब सखियों को छपाई की हुई सुंदर साड़ी, गहरे रंग की तो चाहिए, लेकिन सब सखियों में इसको सुंदर भी दिखना है सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा तो तब ब्यूटी पैजेंट नहीं होता था, पर ऐसा इच्छा रहती थी कि सबसे सुंदर हम नजर आए। और फिर क्या पकवान क्या होंगे उसका भी संकेत इसमें मिलता है। पुआ करी, जो पुआ होता है
1: मालपुआ,
0: जी, पुआ करी कीरति मैया, गुझा मेवान भराओ, मेवा से, जी, मेवा से भरी गुजिया वो बनेगी। अधिक राचनी, जो ज्यादा रचे, अधिक राचनी मेहंदी सो ले, तुम मोकरन लगाओ। वैसी वाली नहीं जो कि ऐसी हल्की धुंधली सी आ जाए,
1: हाँ।
0: पर जो अधिक

0: टचे, वैसी गहरी मेहंदी, हाँ। वो चाहिए मुझे। और फिर झूले का वर्णन है, मानिक चौक पौरी के आगे तहां ले खंभ रूपावो, और जो उसके खंभे बने हैं उस पे मरुवे और मयार जुडांडी चित्र विचित्र करावो। तो क्या भव्य एक दृश्य बनता है
1: जी, मयूर मरावे
0: मरुआ मरुआ, हाँ, और उस फूल लगा के उसे सजाया जाए। और ये जो तीज त्योहार अति बड़ो, सब मन मोद बढ़ावो, ये तो इसीलिए होते हैं तीज त्योहार के, सब अपना मौज मस्ती करें। उमड़े श्याम सजल घन गर्जन, गहरी सुनी सच पावो, उसका सच्चा आनंद जो है तभी होता है जबकि बादल भी उमड़ रहे हैं और बादल की ध्वनि और नगाड़े जो बजते हैं बादल के वो भी सुनाई दे। ये वृंदावन दास जी का लिखा हुआ पद है, और ऐसे बहुत संत कवि रहे जिन्होंने कितना साहित्य लिखा है, उनमें से ये
1: तो अब देर न करियो
0: चलो सखी
1: जी।

0: राग तिलंग में शुभा जी ने हमें सुनाया है तीज त्योहार का पद। शुभा जी, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रही हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगीतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन।

लीजिए श्रोताओ, हाजिर हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस पहले गीत के साथ। बैजू बावरा फिल्म का गीत है। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
3: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम,
4: चलते रे इश्क में पड़ जाते,
3: पूरे दबंग अंदाज में
5: दबंग दबंग दबंग दबंग दबंग दबंग दबंग।
3: और दोस्तों की महफिल सजी हो,

0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
1: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
1: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला तो गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूली बिस्तरी गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र का लिखा गीत शंकर जय किशन की बनाई धुन पर, फिल्म का नाम दाग।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है,

0: सेक्स फॉरवर्ड बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
0: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी।

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम विविध भारती से। इस ब्रेक से पहले आपने सुना गीत सुबह का तारा फिल्म से उषा मंगेशकर की आवाज में। नूर लखनवी का लिखा गीत था, सी रामचंद्र का संगीत। आन फिल्म से शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में ये गीत। शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का ही संगीत।

0: सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम,
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को ही पारित कर दिया था।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 भी कल पारित हो गया।

0: विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा में कल विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। कल ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया।
2: मानसून सत्र में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है।
1: उधर विधान परिषद में कल उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 सहित कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है।
3: करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन और बुंदेलखंड को प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौशाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
4: हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेसनायर का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ थे DGM हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डिबार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे, और रेसिडेंट इंजीनियर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, 2 साल तक लिए उनको भी डिबार किया गया।
1: NHAI के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मेडिकल परामर्श समिति ने नीट UG काउंसिलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण कल से शुरू कर दिया। पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। शुल्क भुगतान 12 अगस्त को शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
5: अभ्यर्थी 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: राज्यपाल

0: आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
1: राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय के भवनों को एकरूपता के साथ डिजाइन किया जाए, साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। यह समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: राज्यपाल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल शाम नई दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। बसपा विधायक के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करे पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
4: कार्यक्रम का पहला गीत अभिलाषा फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

प्यार हुआ है जब से।

0: अभी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए सुनिए सुनिए
6: कहिए
7: सुनिए एक खुशखबरी,
6: कहिए ना,
7: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
6: शुक्रिया, शुक्रिया।
7: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने

0: दिल की बात सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: हम हेरा ही प्यार की कार्यक्रम सुन रहे हैं आप विविध भारती से। सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में अंजाम फिल्म का गीत, अख्तर रोमानी की रचना, गणेश का संगीत।

0: छोटी सी मुलाकात इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

हसरत जयपुरी की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, छोटी सी मुलाकात इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और अब वक्त है कार्यक्रम हम हिराही प्यार के में एक छोटी सी ब्रेक का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की दुनिया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक श्रीमान एक श्रीमती इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें।

0: कदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रे इश्क भी बढ़ जाते पूरे दबंग अंदाज में दबंग, दबंग, दबंग, दबंग। और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
1: ओके टिको, ओके टिको, बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम ये है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
1: निकला तो गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: हमें राही प्यार की इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हम साया फिल्म से। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी की रचना है, ओपी नैयर का संगीत।
4: आज की रात कभी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में

0: جاننا چاہتے ہیں.
1: ہم ایک ساتھ مل کر کریٹ آن انڈیا موومنٹ کی شروعات کریں. ہم بھارت سے جڑی سٹوریز کو, بھارت کے سنسکرتی کو, بھارت کے ہیریٹیج اور ٹریڈیشنز کو پوری دنیا سے شیئر کریں. آپ ایسا کنٹینٹ کریٹ کریے جو آپ کے ساتھ ہی بھارت کو بھی زیادہ سے زیادہ لائکس دے. اور اس کے لیے ہمیں گلوبل آڈینس کو بھی انگیج کرنا ہوگا, دنیا کے نوجوانوں کے ساتھ جڑنا ہوگا. آج پوری دنیا میں لوگ بھارت کے بارے میں جاننا چاہتے.
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई. नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है. सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी. डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था. समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े. नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है.
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका.
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है. पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा. भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है. ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया. इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था. संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी. इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है. राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है. इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है. ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है. लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है. सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे. डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है. राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है. पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं. इनमें 2 महिलाएं भी हैं. ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है. इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है. झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था. प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे. नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है. ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है. रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है. इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी. इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा. इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग

0: अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष

0: राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से, जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और एफसीआरए पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर आरबीआई गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, जेईई तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में न आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मूज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मूज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजीशन एज ग्लोबल हब फॉर कंटेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moved 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Addressing a conference of content creators in New Delhi last year, Mr. Modi called upon them to share India's stories to the world.
1: हमें एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश, भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक

0: जांच तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए ताबून करे जिन्हें उसके हुक्म ने पकड़ रखा है।
1: इस कार्यक्रम में
0: और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान
1: आज हूँ मैं साथियों, स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। अपने शरीर को समय दे, मन को मुस्कान दे और जीवन को नई ऊर्जा दे।
0: भारत की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही अच्छे
1: स्वास्थ्य की पहचान बनती है।
0: तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है जिसका इस्तेमाल
1: सबसे पहले सुनवाएंगे एक एनर्जेटिक सॉन्ग
0: मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर
1: आप सभी को
0: किया जा सकता है।
1: के साथ
0: एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक सीईओ टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी बताया कि मज़कूरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।

है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 ओरोकॉस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजकूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीर के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट

चश्मे बदूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और अब सुनवाएंगे आपको फुकरे फिल्म का गीत सोना मोहपात्रा की आवाज में। मुन्ना धीमन का लिखा गीत है, धुन बनाई है राम संपत ने।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में अगला गीत बादशाह, हैरी संधु, लीसा मिश्रा और असिस कौर की आवाजों में। इस गीत के गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची हैं। गुड न्यूज फिल्म का नाम।
3: दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
4: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा फिल्मकार विशाल भारद्वाज पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की है। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर हैं, जावेद अख्तर की बोल, शंकर एहसान लोई की बनाई धुन।

श्रोताओं, आज है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। मनाया क्या जाता है, इसे हम याद करते हैं जो 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की त्रासदी को याद करवाता है। हिरोशिमा जापान का शहर है। ये घटना हुई थी, अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम इस शहर पर गिराया था इस दिन। इसका परिणाम ये हुआ था कि लाखों की जाने गई थी, कई सैनिक मारे गए थे। जो बचे वे हिबा कुशा कहलाए, विकिरण से जीवन भर संघर्ष करते रहे। दुनिया में पहली बार परमाणु युग की शुरुआत हुई। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और भविष्य की विश्व राजनीति की दिशा तय कर दी। अभी यह दिवस खास महत्व रखता है क्योंकि दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की बढ़ती धमकी और भू राजनीतिक तनाव का सामना कर रही है। यह दिन हमें न केवल अतीत की और उस भयावह घटना की याद दिलाता है, बल्कि शांति, अहिंसा और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करने का नैतिक और वैश्विक आह्वान भी करता है। हिरोशिमा दिवस का उद्देश्य है परमाणु हथियारों के खिलाफ चेतावनी। यह दिन बताता है कि परमाणु शक्ति से सुरक्षा नहीं बल्कि विनाश होता है। शांति और अहिंसा का संदेश, यह गांधी जी के सिद्धांतों को दोहराया जाने का समय है। अहिंसा ही सबसे बड़ा अस्त्र है।

और पीड़ितों को श्रद्धांजलि। और कार्यक्रम चतुर्लोक में अगला गीत इशक जादे फिल्म से। यह फिल्म का नाम शालमली खोलगड़ी ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनि का लिखा, अमित त्रिवेदी की बनाई धुन।

0: सदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रे, इश्क भी बढ़ जाते पूरे दबंग अंदाज में, और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
1: ओके।

0: जान है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
3: मैं निकला गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
5: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
4: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आए हाय
7: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुनेंगे सिकंदर खरबंडा से रेणु बंसल की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। और कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। गुलाम फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में। समीर का लिखा गीत है।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा आज के मेहमान लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल के बोल, एमएम करीम का संगीत।

0: ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाजों में अगला गीत। प्रिया सरैया ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।

0: इस गीत के बाद अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत। चित्रा और केके की आवाजें हैं, गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनु।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
6: अगला गीत बेफिक्रे फिल्म से सुना रहे हैं आपको अरिजीत सिंह की आवाज में। जयदीप साहनी का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है विशाल एंड शेखर ने।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत दे दे प्यार दे इस फिल्म से अरमान मलिक की आवाज है। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, अमाल मलिक ने संगीत से सजाया है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ लेती हूं विदा। मैं पूजा नरानिया, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर। ऐसे

0: है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया।

करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये। और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई चप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थीं। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

हम आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

0: और हम
1: अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म निशब्द की कहानी विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

विशाल भारद्वाज अपने खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात

2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंटोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया था।

विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी, विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार विशाल भारद्वाज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस

0: खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसफर
2: में बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है मेरा। बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूंगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी। तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ, और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूंगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको बेताल बोलते थे उस समय में,

0: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और
0: जी हाँ जी
1: दोस्तों से
0: हाँ,
1: अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
0: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर
0: किताबें
1: से
0: लेने
1: लेने की
0: जाने की
1: जरूरत
0: जरूरत
1: नहीं
0: ही
1: थी।
0: नहीं थी, क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा,
1: बाल
0: गुड़िया, बाल
1: भारती,
0: भारती, राजा भैया, कई किताबें थी,
1: ढेर
0: कई
1: ढेर
0: तरीके,
1: बहुत
0: ढेरों ढेर।
1: सारी
0: और
1: थी।
0: पराग तो मैं अभी भी कहता हूं कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग,
1: बिल्कुल,
0: जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे, जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए, तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा।
1: वाह,
0: तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहां से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
0: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम पे, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सो दूध छोड़
1: बिल्कुल,
0: के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की
0: और
1: किताब के अंदर
0: कोर्स की
1: कॉमिक्स
0: किताब के अंदर
1: रखिए
0: कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लगे हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी
0: कि
1: तौर पर हो
0: हाँ,
1: रहा था।
0: जरूरी तौर पे हो रहा था कि एक और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था, पापा
1: क्या
0: जी को थोड़ा बहुत
1: बाकी
0: था।
1: बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल,
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी, क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल,
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो
0: लोक
1: उस जमाने में
0: कथाएं,
1: हिंदी अनुवाद आया
0: हाँ
1: करते थे, वो भी मौजूद
0: बेहतरीन,
1: रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन तक
0: मुल्ला
1: छापा
0: नसरुद्दीन, हाँ मुल्ला
1: था
0: नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
1: राधुका प्रकाशन।
0: हाँ, राधु का प्रकाशन, और उसमें एक कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ
1: क्या
0: नाजानू की
1: बात है,
0: कहानियां,
1: वाह।
0: और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर
1: बिल्कुल,
0: काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी, और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी,
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है मेरी
1: सबने
0: जनरेशन
1: पढ़ी,
0: में। जी
1: बिल्कुल।
0: जी जी
1: तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल, तो
1: कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूं। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण है, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं। बहुत लंबे समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में,
0: पाकिस्तान में
1: हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लगता
0: ये
1: था।
0: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: जैसा वो, हाँ, जैसी जिसकी नजर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
0: तो उस दौर ये कौन कौन से नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
0: पहले ही बॉक्स में नाम आता था।
1: हाँ, पहले

0: बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबेरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था. तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रिक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिपकर भी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं. ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रख लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है. तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की. तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है. मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूँ.
1: बहुत बढ़िया बात है. तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे. दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी. शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं. तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था. कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे. तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में. कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था. एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं. तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में. और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे. तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा. तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया. मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूं और मैं ये भेज सकता हूं छपने के लिए. अच्छा. तो कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो. तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए.
1: लिफाफा
0: भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था
1: जी.
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: हाँ, तो
1: आप
0: कुछ भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए. मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ताउम्र रहना चाहिए. तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में. अच्छा. और सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी. मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं. फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्रॉइंग्स बेहतर करता हूं लिखने से. तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका. तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था. तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा. हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब. तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून. तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में. मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडीगढ़ गए, पहले ही दिन पहले ही कार्टून गए और

0: 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपए चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा क्योंकि मैगजीन भी छूटी थी, तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
1: यस
0: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे। अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था।
1: हाँ,
0: दो सेट में
1: और वो बड़ा महंगा लगता था।
0: 56 रुपए बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपए मिल रहा था महीने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था। मैं तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही

0: इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे?
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा। मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए।
1: अपनी बड़ी होनी चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोड़ी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की। मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
1: कितने साल चलाई
0: वो? हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी,
0: अलग कहानियां हैं। वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
1: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई, ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी। लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था। तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: तो
0: मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा रकम,
0: बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही ठीक ठाक, और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा?
1: अच्छा,
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप रे बाप।
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया,
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
1: आगे की कहानी सुनेंगे। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे।
0: चलिए कहां

0: नवी में आप फेल हो गए?
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ, कि फेल हो जाऊंगा।
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ?
1: नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
0: नहीं, और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया,
1: छूट गया,
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं, वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना कहीं
1: कुछ छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पर कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवी में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो। क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप नाइन्थ में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप दसवीं नहीं गए, आप वापस नाइन्थ रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका। उसमें बच्चे की गलती है नहीं है,
0: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता। हाँ, वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है
1: ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो।
0: हाँ,
1: तो स्टिग्मा तो आ गया था और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो।
0: हाँ,
1: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं, किसको ना बताएं, पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं,
0: नजरें कैसे मिलाएंगे?
1: हाँ। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
0: हाँ।
1: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल। देखिए, बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही।
0: घर वालों का एटीट्यूड क्या था?
1: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
0: क्या काम था वो?
1: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई वो मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे।
0: अच्छा। हाँ, ये सब चल रहा था।
1: और ये सब चल रहा था, उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर। तो वो शुरू किया मैंने, मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पर लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी, वो खत्म होने लगी, वो चीज हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का

0: कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका, शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि फेल्योर जब एक बच्चा फेल होता है
1: उस बच्चे
0: तो के ऊपर अपने अपने आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है। Correct. उसके ऊपर नई चीजें मत ला दो क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पर निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद।
0: अच्छा,
1: सेकंड ईयर।
0: ये एक तरह की राहत,
1: एक तरीके की राहत थी। तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो घबराहट नहीं थी।
0: हाँ।
1: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे, सेकंड ईयर में इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
0: अच्छा।
1: हाँ, मेरी लाइब्रेरी

0: हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो
1: सर्कुलेट
0: रही
1: होती
0: थी
1: रही,
0: उसी शहर में।
1: क्या बात
0: हाँ, तो
1: है।
0: ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई, मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे जितना झेल सकते थे आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का। तो
1: एक
0: वो
1: नए सिरे से बनने की तैयारी थी
0: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
1: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
0: सुपर कमांडो
1: प्रतिशोध
0: ध्रुव की
1: की
0: पहली किताब,
1: ज्वाला।
0: हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी वो, और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
1: हाँ,
0: तो
1: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी।
0: धीरे धीरे धीरे धीरे करके,
1: और मेरी मेरी पीढ़ी मेरे ख्याल से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूं तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज को खुद करके ना देखूं, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीजें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मजा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है? तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देखे आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से।
0: अरे,
1: तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहां से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्राण की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूं, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूं उससे अटैच भी हूं और डिटैच भी हूं। अटैच हूं जब तक मैं उसको बना रहा हूं, डिटैच हूं द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूं। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है, तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां

0: खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके,
1: अरे
0: वो
1: बाप
0: कहीं मेरे पास रखा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं। मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई स्कोप ही नहीं
1: सिस्टमेटिक
0: था,
1: मामला नहीं
0: स्कोप
1: था।
0: ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में। मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी और जो कोर्सेस थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेस। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आता बिरा है। मतलब वहां आप आलोक शर्मा आता बिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम कहाँ था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ। सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह,
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार उस
1: मौजूद
0: स्टूडियो में
1: थे।
0: थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियां पसंद आने लगी, उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्रॉइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं था।
1: साथ।
0: गौतम कॉमिक्स था, गौतम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल जाता
0: निकल
1: है।
0: जाता है। अब वो काम बन जाता है कि
1: यस
0: आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6, 7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा, जिनको बोलते हैं मांगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मांगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मांगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे
1: बिल्कुल
0: कि

0: में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दी की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीने अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीने हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: लिफ्ट करा दे
1: अदनान समी की आवाज़।

ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों से।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

रफकत अली खां और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे अमीर खुसरो की ये रचना। आइए अब सुनते हैं अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत। एल्बम का नाम है कभी तो नजर मिलाओ।

एक औरत है कि जिसमें मर्द को ललकारने की हिम्मत है, पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगर चे फूल का इकहार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं असल
0: वो में... वो मैं अरे क्या वो मैं साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
1: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

साबरी ब्रदर्स और साथियों की आवाजों में ये थी कव्वाली। आइए अब सुने रानू मुखर्जी के स्वर में ये गीत। रचना है कृष्ण राघव की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत में श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसुला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में

0: ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। लता मंगेशकर के स्वर में ये है पद्मा सचदेव का लिखा गीत, संगीत जयदेव का है फिल्म प्रेम पर्वत।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर

0: रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मशाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल थे, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था। इजाजत फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: राजनीति और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। उमरा जान फिल्म की गजल सुनिए तलत अजीज की आवाज में, शहर यार के बोल, खयाम का संगीत।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

शराबी फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो दोस्तों, अब तक तो आपको प्रोग्राम का स्वरूप पता ही चल चुका होगा कि इसमें हम एक इबारत टेक्स्ट लिखते हैं फेसबुक पेज पर, विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमारे बहुत सारे श्रोता या कहें कि अनगिनत श्रोता टिप्पणी लिखते हैं और वो टिप्पणी इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो चलिए आज की इबारत हम पढ़कर सुना देते हैं, जो अभी तक विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं है उनके लिए खास तौर से। और इस इबारत में से आपको शब्द चुनने हैं और गाने चुनने हैं। अब ये नहीं कि बात विदाई की पकड़ ली और उसी पर बातें लिखे, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों के भावों को भी पकड़िएगा। तो अब हम इबारत पढ़ के सुना रहे हैं। वो भीगी दोपहर थी, रिमझिम फुहार पड़ रही थी, आंगन में रखी गुड़िया को देखकर अम्मा की आंखें भर आई, उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई जिसकी विदाई को कई बरस बीत चुके थे। अब इसमें एक शब्द है बरस, इस पर कौन से गाने होंगे बताइए। उसने अम्मा से विदाई के समय कहा था, मेरी गुड़िया रख तो संभाल के, मोरा नहीं खेलन का चावरे बाबुल। और अब ये गाने की लाइन मैंने लिख दी है क्योंकि ये गाना आप कभी कभार सुनते हैं। तो क्या आपने इस गाने को कभी पहले सुना था? फिल्म का नाम जरा बताइए। और अब आगे इबारत आगे पढ़ रही हूँ। फिर उसने कहा था, अम्मा मोरे बाबा को भेजो रे के सावन आया, फिर घर सूना हो गया, कभी इसी घर में भाई बहन की हंसी गूंजती थी, छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना चलता रहता था, आज पूरा परिवार साथ होते हुए भी घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी बेटी का फोन आया, उसकी हंसी सुनते ही अम्मा का चेहरा खिल उठा, सावन की फुहारों के साथ जैसे घर में फिर वही पुरानी रौनक लौट आई। सबने महसूस किया कि रिश्तों में प्यार बना रहे तो हर विदाई के बाद मिलन खुशियों से भर देता है। अब यहाँ पर बताइए, रिश्ता शब्द आपके पास आ रहा है और याद आ रही है, घर है, प्यार है, विदाई है, तो हमने आपको हिंट दे दिया, मतलब यूं कि हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ बल्कि ये आपको हम हिंट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। तो आप बताइए कि कौन से वो शब्द हैं जिनसे आपको गाने सूझ रहे हैं और कौन से वो भाव हैं जिनसे आपके भीतर जज्बात पैदा हो रहे हैं, तो वो जज्बात भी साझा करते चलिए और साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी। अब भला बताइए कि कौन है ऐसा जिसने विदाई की पीड़ा को न सहा हो, तो अपने अनुभव साझा कीजिए। आपने विदाई की, आप विदा हुए कहीं अपने घर से, विदाई सिर्फ बेटी की नहीं होती है, ससुराल जाते समय विदाई वो भी होती है जब आप कहीं पढ़ाई के लिए देश विदेश की यात्रा करते हैं, शहर छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, हॉस्टल में जाके रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, वो यादें, वो बातें, तमाम बातें साझा कीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं सिलसिला और देखिए कि क्या यही गाना आपने सोचा था कि हम पहले नंबर पर रखेंगे, यही गाना या कोई और गाना। तो चलिए आज के शब्दों को चुनिए, गानों को चुनिए और यादों को चुनिए, यादों को खंगालिए। शुरू कर रहे हैं सिलसिला परख फिल्म का गाना। बताइए हमें गीतकार और संगीतकार का नाम क्या है?

परख फिल्म का गाना था। गीतकार संगीतकार शैलेंद्र और सलील चौधरी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, त्वरित जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है। और एक श्रोता नहीं बल्कि अनेक श्रोता लिख रहे हैं, अब के बरस भेज, मतलब बंदिनी फिल्म का गाना। तो इतने सारे श्रोताओं ने ये गाना लिखा है, तो हमें लगता है वही गाना अब बजाया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्पणियां भी पढ़कर सुना दी जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दिल को छूने वाली है, पर पढ़ के मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा कि अपने बचपन की यादें बताऊं, बेटी की यादें साझा करूं। खैर, हमारा बचपन तो बहुत संघर्षमय रहा। माँ को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी खेती बाड़ी के काम से, पर जब भी कभी नागपंचमी या राखी आती तो बाबा फोन करके पूछते रहते थे। आज भी पूछते हैं, बाई तू कभी ये, मतलब तुम कब आ रही हो। और बहुत सारे श्रोता विदाई पर कुछ बातें लिख रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विदाई सिर्फ बेटी की विदाई नहीं होती है, या जो लड़कियां हैं औरतें हैं सिर्फ आपकी विदाई नहीं होती, बल्कि आप अपने बेटे को भी विदा करते हैं, आप अपनी बेटी को विदा करते हैं जब वो पढ़ने के लिए घर छोड़ते हैं। तो वो बातें भी साझा कीजिए। आप खुद हॉस्टल में रहे होंगे, वो यादें भी साझा कीजिए। और इसमें हम मिली जुली टिप्पणियां शामिल करते हैं, मिले जुले विषय को रखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय बरखा की कुछ बूंदे उन आंखों से भी छलक जाएंगी जब एक माँ अपनी बेटी की विदाई के समय को याद करते हुए उसकी यादों की गुड़िया के खिलौने को बड़े प्यार से निहार रही होगी। और एक श्रोता ने लिखा है, अब के बरस तुझे धरती की रानी, मतलब बरस शब्द से इन्होंने ये गाना चुना है। तो शब्दों को पढ़ते रहिए और गाने चुनते रहिए। अब अगला गाना सुनते हैं बंदिनी फिल्म का। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को लिखा है। अब इसके बाद बंदिनी फिल्म के गाने के बाद कौन सा वाला गाना आना चाहिए वो भी जरा आप चुनिए, बताइए हीरोइन कौन है इसमें। इस फिल्म में हीरोइन का नाम पूछना है आपको।

बंदरी फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और हीरोइन होती है फिल्म में नूतन। सभी श्रोताओं ने ये भी जवाब सही दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गजब, आपने तो शुरुआत की फिल्म परख के गाने से ओ सजना बरखा बहार आई, बिल्कुल ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन क्यों नहीं सोचा था, इसमें फुहार शब्द कहीं आता है ना, और इबारत में है, इबारत में जो कुछ लिखा है उसमें कोई न कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें आपको गाना जरूर याद आएगा। हालांकि अब एक गाना हम ऐसा सुनवाने वाले हैं जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, और उस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात होगी, कोई खास याद होगी, तो जरूर साझा कीजिएगा। जरा इंतजार कीजिए, हम पहले टिप्पणी आपकी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हमने पहली जॉब जहां थी उसी नगर से दूसरी जगह जाना हुआ, तब हमारे मकान मालिक और उनकी पत्नी ने हमें अपने बच्चों को विदाई देते हुए ऐसे रोते हुए ढेरों प्यार बरसाते विदाई दी थी। क्या बात है भाई, जब दरअसल अभी भी छोटे शहरों में जब बच्चे घर से पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी शामिल हो जाते हैं, या फिर जब बेटी अपने मायके आती है तो अड़ोसी पड़ोसी छतों से झांकते हैं, और जो जिनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है वो मिलने भी तुरंत आ जाते हैं कि बेटी अपने ससुराल से मायके आई है। ऐसे ही कुछ समा होता है अड़ोस पड़ोस के साथ। हालांकि महानगरों में ये चीजें कम होती हैं क्योंकि महानगरीय व्यस्तता आड़े आ जाती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सावन का महीना बड़ा अच्छा माना जाता है, खासतौर से बहन बेटियों की यादें ताजा कर देता है। ये महीना एक तरह से प्रेम उमंग का महीना होता है। हमें वो दिन याद आते रहते हैं जब बहनें इस महीने में झूला डालकर झूला झूलती थीं। हम भी उनके साथ झूले पर झूलते थे। उधर रक्षाबंधन की भी याद दिला देता है, और सावन मास की तीज का त्योहार तो एक बहनों का खास दिन हुआ करता था। मोहल्ले की सब बहनें मिलजुल कर इस दिन को खास तौर से एक पर्व के रूप में आज भी मनाया करती हैं। जब बहनें ससुराल

जाती हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ससुराल में चाहे उन्हें कितना भी सुख हो पर वो आंगन याद आता है जब साथ साथ खेला करते थे, पुराने बचपन की याद ताजा हो जाती है। और वो गुड़िये वाले दिन कैसे नहीं याद आते हैं कि गुड़िया गुड़िया का एक संसार होता था, गुड़िया गुड्डे का। तो जब एक बेटी विदा होती है तो अपने माँ से क्या कहती है कि मेरी गुड़िया संभाल के रख दो, अब खेलने का समय नहीं रहा। लेकिन मन में ये आस जरूर होती है कि माँ गुड़िया संभाल के रखेंगी और जब मैं लौट कर आऊंगी तो इन्हें खेलूंगी। कुछ यही बात ये गाना कहता है, जरा सुनिए। फिल्म है तुम लौट आओ। अगर आपको पता है तो किसकी आवाज में ये गाना है जरूर बताइए। इस गाने से जुड़ी कोई खास बात हो, कोई खास याद हो तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

तुम लौट आओ फिल्म का ये गीत था, सरला भिड़े और शोभा जोशी के स्वर थे। अभी तक हमारे श्रोता नहीं बता पाए किनकी आवाजें थी, हमने आपको बता दिया। चूंकि ये गाना आपको बहुत कम सुनने को मिलता है इसलिए हमने जानकारी दे दी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से 30 बरस पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए अपने दो बच्चों को छोड़ने गई थी, वो याद आ गया आंख में आंसू के साथ। शायद लेडीज समझ पाएंगी कि बच्चों के जन्म के समय कैसा दर्द होता है। बिल्कुल वही दर्द मैंने उस दिन महसूस किया जब बच्चों को छोड़ा था। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदा दुनिया के सबसे मार्मिक शब्दों में से एक है। एक विदा ऐसी भी होती है कि अब इस जन्म में उससे मिलने की आस खत्म हो जाती है। ऐसी विदा जीवन भर दुख दे जाती है। बेटियों की विदाई में तो सुखम दुखम का क्रम चलता रहता है। विदा कैसी भी हो, जाने वाले कभी पूरी तरह से नहीं जा पाते। वे रह जाते हैं कोई पुरानी तस्वीर में, कोई अधूरी बातों में और उन जगहों में जहां हमने साथ मिलकर एक वक्त गुजारा था। एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार में माता पिता भाई बहन का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा होता है। रूठना मनाना चलता रहता है। बेटी की विदाई एक सुनापन सा एहसास देता है। बेटी के फोन पर हंसी सुनकर घर में खुशी और रौनक फिर से सबके मन में खिल उठती है। बस इन्हीं शब्दों से गाना चुनिए आप। बेटी शब्द इसमें आया है, विदाई तो है ही, रूठना मनाना है, हंसी है और फोन भी है।

तो फोन शब्द से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है हम सुनवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ गाने सुझाएं। फिलहाल चोरी चोरी फिल्म का ये गाना सुनिए। रचना किसकी है आप बता सकते हैं और संगीतकार का नाम भी बताइए।

बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही भावुक गाना सुनाया, और इसके पहले जो गाना सुनवाया था बिछड़ी मेरी सहेलियां तुम लौट आओ, इसके लिए भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहली बार सुना, ये गाना हमने कम सुना, और बहुत ही भावुक कर देने वाला ये गाना था। सचमुच कई बार हम गीत सुनकर ही जज्बाती हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज मुझे 35 साल पुरानी बात याद आ गई, जब हम छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर होकर आ रहे थे तो जो मकान मालकिन थी जिसे वहां दाई कहते थे, वो इतना रोई और एक बेटी की तरह मुझे विदा की। रास्ते के लिए खाना भी रखा और साड़ी भी दी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सावन के गीतों को सुनने का आनंद मिलेगा। सावन के दिनों में अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, पर याद कर घर जाकर मिलने की आस भी रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब वो खुद विदा की जाती है और बेटी होगी तो उसे शादी करके विदा किया जाता है, वो मंजर बहुत भावहीना होता है। अगर बेटी या बेटा पढ़ने या नौकरी के लिए विदा होते हैं तो एक एहसास होता है लौट के फिर आएंगे,

मेरी बेटी पुणे से कोंकण नौकरी के लिए गई थी तब पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू देखे थे। सचमुच विदा किसी भी तरह का हो, विदा दुख देता है, आंखों में आंसू ला देता है। बहरहाल अब चलिए जरा बरखा की बूंदों में भीगा जाए। चिराग फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इसमें पहली है, पहली ये कि आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार। हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए फिल्म चिराग। और भी कोई गाना याद आ रहा है इन शब्दों पर इबारत वाले, वो भी आप लिखते चलिए। अगर बहुत सारी फरमाइश आ जाएगी कि इन यही गीत है जो इबारत वाले शब्द है, तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे।

इसके बाद बताइए फोन वाला गाना कौन सा याद आ रहा है आपको, जिसमें जिस गाने में फोन शब्द हो। बेटी जब जाती है ससुराल तो फोन करती है ना, टेलीफोन, तो बताइए वो गाना।

चिराग फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था, हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, आशा पारिख और

0: सुनील दत्त। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई की बात आई तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब माता पिता पढ़ाई करने या जॉब करने अपने बच्चों को स्टेशन छोड़ने जाते हैं। मम्मियों के आंसू नहीं रुकते, जिसकी मैं स्वयं साक्षी हूं। भोपाल से हम सफर एक्सप्रेस पुणे मुंबई चलती है, उन माओं में मैं भी शामिल थी जिनके आंसू सबको जानते हुए रुक नहीं रहे थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सावन की बात है, ऐसा लगता है कि ममता जी की आंखों में भी सावन होगा। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने रुला दिया वो गाने सुनाकर। मेरे ख्याल से इस गाने की बात है, बिछड़ी मोरी सहेलियां और अम्मा मेरे बाबुल को भेजोरी। ये ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर किसकी आंखें नम नहीं होती हैं। तो इन्होंने आगे लिखा है कि आज न मम्मी है न पापा है, एक भाई है, हमसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो अपने परिवार के लिए मजबूर है, इसलिए फोन पर ही बात हो जाती है। आज मन बहुत भावुक हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि परख फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया, बेहद लोकप्रिय गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना और बरखा से जुड़ा हुआ, बारिश की रस भरी फुहार किस तरह से पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे दिलों में भी प्रेम रस का संचार करता है ये गाना, उसी का वर्णन है इस गीत में। सलिल चौधरी के शास्त्रीय लोक और पहाड़ी धुनों को मिलाकर बनाए हुए गाने इतने ज्यादा मीठे लगते हैं सुनने में कि जब भी हम इन्हें सुने तो कितने भी तनाव में हो मन प्रसन्न हो जाता है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ये गाना सुनवा देंगी। कई बार उम्मीद के विपरीत गाना सुनवाने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन अब जो गाना सुनवाएंगे वो हम आपकी उम्मीद के मुताबिक ही सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। हमने पूछा था कि कौन सा गाना फोन पर याद आ रहा है, टेलीफोन पर, कि जब बेटी विदा होती है, जो अम्मा है इस इबारत में कि अम्मा कहती हैं कि फोन आया बेटी का और उनके सामने यादें साझा हो गई, तो फोन वाले गाने हमने आपसे पूछे थे। अभी तक तो सिर्फ इसी गाने की फरमाइश आई है। फिल्म का नाम बता सकते हैं तो बताइए, जरा जल्द बताइएगा फिल्म का नाम।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।
0: किसकी है आवाज ये भी बताइए।
1: देवी से बात करना चाहता हूँ।

मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। आप बताइए अपने अनुभव कि टेलीफोन जब करते हैं तो कितनी देर बतियाते हैं, और टेलीफोन से जुड़ी हुई कौन सी याद है, कोई खास बात है तो वो आप साझा कर सकते हैं। हमने पूछा था फिल्म का नाम पतंगा, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, और शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजें थी, ये भी सही बताया हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बात 1974 की होगी, जब हम नौकरी की खोज में जम्मू गए थे, जहां एक मित्र मिल गया जिसने महीने भर अपने घर रखा, और नौकरी न मिलने पर वो हमें छोड़ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर आया था। ट्रेन चढ़ने पर भी मैं रो रहा था और वो भी रो रहा था। कुछ वर्षों तक बातचीत पत्रों से होती रही, लेकिन कुछ समय बाद उसके खत नहीं आए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब सावन की पहली फुहार पड़ती है तो उसकी विदाई का दिन याद आ जाता है। भीगी आंखों से उसे विदा किया था और मुस्कुरा कर कहा था खुश रहना। उस दिन समझ आया कि माँ बाप की दुआओं में कितना साहस छिपा होता है। बेटी चली जाती है लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी यादें हमेशा घर के आंगन में गूंजती रहती है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पुरानी यादों में ले जाकर आंखों में आंसू ले आए। आज माता पिता बहन इस दुनिया में नहीं, लेकिन यादें ताजा हो गईं। उस घर की जो जन्मभूमि रही, जहां छोटा सा परिवार हंसी खुशी सपनों के साथ रहता था। सावन माह कुछ ज्यादा ही याद आता है। ऐसा कोई सावन नहीं गुजरा जब माँ के पास नहीं गई। छुट्टियां नहीं मिलने पर भी एक ही दिन में आना जाना कर लेती थी। अब बरसों से सावन उदासी लेकर आता है, बस यादें ही शेष हैं। यादों में विदाई सबके बसा हुआ। सारे श्रोता आज विदाई की बात लिख रहे हैं और अपनी अपनी यादें खंगाल रहे हैं। जरा अब एक और गाना सुनिए इसी तरह, और साझा कीजिए अपनी यादें, और साथ में हमें ये भी बताइए कि किसकी है ये आवाज। हीरो हीरोइन का नाम तो आपको पता ही होगा। फिल्म हम आपके हैं कौन।

बहन शब्द से कोई गाना याद आया आपको? जरा बताइए। इबारत में भाई बहन है, और भाई बहन वाला गाना याद आए तो जरूर बताइए।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बूझा, शारदा सिन्हा की ये आवाज थी और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। हालांकि इसमें हीरो हीरोइन होते माधुरी दीक्षित, सलमान खान के भी बताया है श्रोताओं ने। और विदाई से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत ही भावुक कर देने वाला है, अभी मेरी बिटिया की विदाई का समय तो दूर है पर आज ही अपनी विदाई का वक्त याद कर आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। और इन्होंने बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए ये गाना भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत, आज की इबारत हर बेटी के मन में बसे सावन की साझा स्मृति है। सावन केवल पेड़ों पर नहीं उतरता, वो यादों की शाखों पर भी झूलता है। भीगी दोपहर, आंगन में रखी गुड़िया और अम्मा की नम आंखें मिलकर उस रिक्तता को स्वर देती हैं, जिससे हर बेटी की विदाई घर की चौखट पर छोड़ जाती है। वो गुड़िया महज एक खिलौना नहीं, बचपन की आखिरी अमानत है। और सावन आया केवल ऋतु का संदेश नहीं, बल्कि उस बेटी की मौन पुकार है जो मायके की दहलीज, अम्मा की गोद और बाबुल के स्नेह को एक बार फिर जी लेना चाहती है। पर माँ का मन वहीं ठहरा रहता है जहाँ विदा होती बेटी ने आखिरी बार मुड़कर देखा था। चलिए, अब हमने आपसे पूछा था भाई बहन वाला कौन सा गाना आपको याद आया, तो कहीं ये गाना तो नहीं है? सुनिए और बताइए फिल्म का नाम।
1: मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
0: हीरो हीरोइन का नाम भी आपको पूछना है।

इस गाने को सुनते हुए बहुत सारे श्रोताओं को भाई बहन वाले गाने याद आए और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है किसी महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो भाई बहन वाले गाने बहुत याद आते हैं। और शारदा सिन्हा के लिए लिखा है कि शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला कही जाती थी। और एक श्रोता ने और लिखा है भाई बहन का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का गीत, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, फूलों का, तारों का सबका कहना है और बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद वो सावन भी आए जो बहन सा रंग ना लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुंच ना पाए, ये कविता की पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन पर फिल्म छोटी बहन का गाना याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। और गाने सुनते जा रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है गाने सुनते जा रहे हैं, आंखें साफ हो रही हैं, भावुक हो रहे हैं, बस यही चल रहा है आज के प्रोग्राम के साथ। और एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज इस फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं। और टेलीफोन से जुड़ी हुई हमने बात पूछी थी कि टेलीफोन वाला जो गाना सुनवाए तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, तो श्रोताओं ने लिखा है कि अगर फोन पर पिता पुत्र बात कर रहे हैं तो केवल कुछ मिनट मतलब की बात होती है, अगर माँ बेटी की बातें हों तो समय असीमित होता है, यूं समझ लीजिए घंटों घंटों कुछ मिनट के समान होते हैं। एक श्रोता ने बिल्कुल सही बात है कि जब माँ बेटी बतियाने लगती हैं तो भूल जाती हैं कि हम टेलीफोन पर बतिया रहे हैं, लेकिन आजकल जो दो दोस्त बात करते हैं तो वो भी अनलिमिटेड बातें होती हैं, पता नहीं चलता समय का। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आठवीं कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा था अपने बड़े बेटे को, तो पति पत्नी दोनों को कई दिनों तक याद आती थी, सभी समझते थे कि पढ़ाई करने गया है, लेकिन परिवार से अलग होने का बिछोह ज्यादा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने 2002 में लैंड

सीमा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने पूछा था कौन है कलाकार, सभी श्रोताओं ने बताया नूतन। और कुछ

श्रोताओं की टिप्पणियां हम शामिल कर दें, उससे पहले जो अब हम गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में एक सवाल पूछ लें। दाता फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, उसमें आपको पूछना है कौन है इस फिल्म में कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। और आपको बता दें, एक श्रोता ने लिखा है, सच्चा झूठा फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया ये अमर रहेगा, क्योंकि जैसा किशोर दा ने गाया है ऐसा कोई गा नहीं सकता, उन्होंने जो भाव से गाया है वो भाव अमर है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई शादी के बाद तो विदाई होती है, विदाई भाई बहन से, बिछड़ने का वो बचपन जहां हम मिलकर खेले झगड़े किए फिर मिल गए, जब जब मायके जाती हूँ तो आते समय आंखें अपने आप भर आती हैं, सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख आज भी हमें सताता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी जब अपने ससुराल से पीहर मेरे घर आती है और कुछ दिन रहने के बाद जब उसे वापस ससुराल जाना होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि घर पूरा सूना हो गया है। चलिए सुनते हैं ये गाना।

दाता फिल्म का ये गाना सुनते हुए बहुत सारे श्रोता फिर भावुक हो गए और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगी। एक श्रोता ने अभी भी लिखा कि मैंने अपनी विदाई की बातें तो बताई ही नहीं। मेरी विदाई पर सारे घर वाले हम लोगों को ट्रेन पर छोड़ने आए थे। ट्रेन चल रही थी और वो लोग भी रोते रोते चलते रहे। आज कोई भी न छोड़ने वाले है न रोने वाला है। अब दरअसल व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई है लोगों के घरों में कि अब वो जमाना नहीं रहा कि एक कोई जाता है परिवार से और 10 लोग परिवार के छोड़ने आते हैं। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर हो रहा है खत्म। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

भाव नहीं बल्कि मन की सुंदर भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी उदास मन में आशा का दीप जला सकती है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अपनापन जोड़ सकती है। मुस्कुराहट वो फूल है जो बिना मौसम के भी खिलता है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व में भी आकर्षण भर देती है। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करता है। कभी कभी किसी की एक सच्ची मुस्कान थके हुए मन को सुकून दे जाती है। ये रिश्तों में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और वातावरण को सकारात्मक बना देती है। मुस्कुराने के लिए किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार छोटी छोटी खुशियां भी होठों पर मुस्कान ले आती है।

मुस्कुराहट ईश्वर का दिया हुआ ऐसा उपहार है जिसे बांटने से कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। ये जीवन की राहों में आशा, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। मुस्कुराहट वो खामोश कविता है जिसे चेहरा लिखता है और दिल पढ़ लेता है। कहते हैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजार शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। किसी परेशान व्यक्ति को दी गई छोटी सी मुस्कान उसके मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये वो अनमोल उपहार है जिसे देने में कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मुस्कुराहट जीवन की कठिन राहों में एक सहारे की तरह होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।

मुस्कुराहट रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाती है। घर में माता पिता की मुस्कान बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती है, दोस्तों की मुस्कान मित्रता को गहरा बनाती है और किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी पल भर में एक सकारात्मक संबंध बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे में मुस्कुराहट मन को शांति देने वाली औषधि के समान है। ये वातावरण को हल्का बनाती है और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहट केवल खुशी के समय की पहचान नहीं है, बल्कि ये संघर्षों के बीच भी उम्मीद बनाए रखने की ऐसी शक्ति है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही मुस्कुराता हुआ इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे की सुंदरता से अधिक हृदय की सुंदरता को दर्शाती है। मुस्कुराहट वो दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है। इसे बांटते जाइए, क्योंकि यही जीवन को सरल, सुंदर और मधुर बनाती है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी

0: आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में

0: को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye ji raha hoon. और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। नगर से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
5: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
4: इस बीच

0: चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले एएचएफ एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है और उसके साथ साथ संदेश

भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओ, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओ, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है, फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी
audio@cieet.nic.in पर भी।

0: अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी। और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
3: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
6: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
6: जी जी, चलो चलो देखते हैं।
3: चलो चलो चलो चलो, चलो चलो जल्दी चलो।
7: अहोम के महाराज की जय हो।
8: जय हो, जय हो।
7: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है।

0: है। अति सुंदर, हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
6: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
4: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
6: अच्छा।
4: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
6: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
6: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
4: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
6: ओह।
4: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
6: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
4: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
6: ओह।
4: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
6: अच्छा।
4: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
6: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
5: जी।
6: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
4: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
6: जी।
4: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
6: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा,

0: तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो, कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटी जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक है, आई पसंद। और देखो ये भालू ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। लो लो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे, पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूँ।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मम्मा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
3: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
3: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
3: नहीं।
4: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
3: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें

0: नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है, वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
1: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल, फूल फिर से, वाह। तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
2: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
1: मैं तो बाहर जा रही हूँ। हम अरे वहाँ देखो चिड़िया, तोते कितने सुंदर हैं।
2: अरे सुन तो,
1: मैं तो जा रही हूँ।
2: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
3: एक बात देखी तुमने?
2: हाँ।
3: यहाँ हम जब से आए हैं, खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
2: सही कहते हो आप।
3: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
0: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे, वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे, तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

0: सहेली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती भी तुम्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: मंजरी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती बताओ कैसी हो, कैसा लग रहा है आज का दिन तुम्हें, कैसा लग रहा है?
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में जब धूप खिल जाती है ना तो मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है।
0: और खिली धूप में जब बारिश के भीगे हुए पत्ते होते हैं ना तो बिल्कुल चमकदार लगते हैं, धूले साफ लगते हैं, तो मन बड़ा वैसे भी आनंदित हो जाता है। और बारिश लगातार होती है तो लगता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई धूप थोड़ी निकले, क्योंकि कपड़े वपड़े सूखे, जो सीलन है वो सब गायब हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखो आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, विषय बता देते हैं पहले कि उपयोगी टिप्स में हम बात करने वाले हैं बारिश में घर की सफाई।
1: तो आप लोग किस तरीके से बारिश में अपने घर की सफाई करते हैं या क्या आप उपाय अपनाते हैं अपने घर को साफ रखने के, और जो थोड़ी सी सीलन वाली एक महक सी आ जाती है उसको दूर करने का आप क्या उपाय करते हैं, तो आप हमें लिख कर भेजिए।
0: और देखो बहुत सारे हमारे साथियों ने संदेश भी भेज रखे हैं इस पर। और मुझे कुछ कहना है जो आज हम सेगमेंट लेते हैं उसमें, वो चिट्ठियों का जमाना।
1: तो भाई वो चिट्ठियों का जमाना जो था ना वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी यादें बसी हुई हैं,
1: मन में बसी हुई हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी आप भेजते थे चिट्ठियां और आपके पास चिट्ठियां आती थी तो उसका जो आपका अनुभव है वो आप अपना अनुभव जो है वो हमें लिख कर भेजिए, हमारे साथ साझा करिए उन यादों को, तो हम एक बार फिर से उन पलों को जी लेंगे।
0: बिल्कुल जी लेंगे। और आज और क्या हम लेकर के आए हैं?
1: आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलक कैल देवी की अम्मा जो पर्यावरणविद हैं, और साथ ही हम लेकर आए हैं लुप्त होती पारंपरिक कलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आप आपके पास जो भी इनके बारे में जानकारी है आप हमें लिखकर भेजिए, और आप किस तरह से इनसे जुड़े हुए हैं अगर ऐसा भी कुछ है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
0: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं हम लोग गीत, फिर आगे करेंगे बातें।
1: बिल्कुल।

हम जो अचानक मिले।

0: अदाओं के साथ फिरकते कदम
1: चलते रे इश्क में बढ़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में
2: दबंग, दबंग, दबंग, दबंग।
0: और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओके टिको केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम ये है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना
0: है। तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
5: निकला तो गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
6: हाँ तो मंजरी, अब हम बात करते हैं अपने जो नया सेगमेंट जो हम ये लेते हैं कहानी पद्मश्री की। तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक कैल देव की अम्मा जो कि पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देव की अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे। उनका देव की अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देव की अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
7: और देव की अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
6: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देव की अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
7: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के

0: सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात है, एक इतनी अच्छी चीज की शुरुआत करी है ना, कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं, दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
0: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंक मणि, जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं, चार पीढ़ियों ने मेरी मां के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे। और वो कहती हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्योहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देवकी अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते लेकिन अधिक से 3000 से भी अधिक वृक्ष वहां पर हैं।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देवकी अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
0: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं, पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
1: बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
0: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी थैंकमणि कहती हैं, 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं, इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
0: और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भू मित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है।
1: और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
0: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत
1: हो सके। और ये देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी, डोर से तो पैर की बंध जाते
1: बिल्कुल बंध जाते हैं, क्योंकि
0: हैं
1: प्यार चीज ऐसी है कि वो
0: ना।
1: हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहां पर पेड़ पौधों से प्यार होता है
0: बिल्कुल।
1: तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है। और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है। और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें, उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं। और
1: बिल्कुल
0: इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्टचित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने। और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े

0: या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
1: बिल्कुल, ये पर्यावरण को देखो, जो परंपरा अगर तुम्हारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं, और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल

0: के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
1: और इसके साथ ही सुजनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ती मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल, इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी, कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
1: बिल्कुल, और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की यात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है, जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
1: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती है। लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आर्थिक कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
0: तो बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आए जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो कला है, सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं, जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं तो इनको सहेजना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम गीतों को भी सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, कितना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना, और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा हैं, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल है।
0: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश हम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, लेख हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने। और चिट्ठियों की इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं सीखो, फिर हम कलाओं की बात करेंगे। तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाके जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रखकर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और देखो,
1: तो
0: हमारे
1: प्यारा सा था ना कि रुका ही नहीं गया।
0: देखो, हमारे साथी लिखते हैं आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली

0: मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी है और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है जैसे कि लोक थे, लोक संगीत का ये बहुत ही सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीजों की तरफ वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें, तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से।
0: बिल्कुल। और लुप्त होती पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी। भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएं लुप्त प्राय ही हैं। और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्ण कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है। और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना, ये हमारे देश की पहचान है, इनको इसलिए इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुने।

0: जब
1: जब
0: जब तुम मेरे सामने आए, लेकिन
1: जब
0: हम
1: जब ये चिट्ठियों के
0: हाँ,
1: संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल मन पे संयम रहता ही नहीं है।
0: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए, उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके
1: हमारे
0: बारे में?
1: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थीं, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
0: क्या बात है। और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आती। और
1: बिल्कुल।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहाँ। चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छिन गया है। और
1: बिल्कुल।
0: वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना। उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता। आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत, धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था। डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकियां लेकर आता था। कागज का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट

0: में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था। चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है,
1: बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है। मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया, क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं आरती कि चिट्ठियां या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देख कर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। मेरे बड़े भाई बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब मैं बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा, तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं, तो मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया करता था, महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था। कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इतर भी डाल दिया करता था।
1: चिट्ठी जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह क्या बात है। और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था, और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हालचाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी। एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था। उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं।
0: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही नहीं पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्योहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाकिये की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते फिर सबको सुनाते। एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे, क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था। लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दें।
1: बिल्कुल। अब एक साथी जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, चिट्ठियां होती थी है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी, पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि कितनी जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिल लोगी जाके।
0: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना।
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं, तो एक हमारी साथी लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है, और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोज पत्र और ताड़ पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज कलम स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार भाव भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है, और साथ ही साथ अपनी प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श का व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजोई ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट, ई और इन सब चीजों में कहां मिलती है।
2: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता रहती थी, उसमें घोप कर सुरक्षित रखा जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे।
3: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थी, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थी। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी, क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
2: चलो एक गीत सुन।

0: तो आरती, बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में
1: बिल्कुल
0: कैसे रखें सफाई? तो इसके लिए देखो, घर के जो पावदान है उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहनाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहां पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की
1: बिल्कुल
0: दीवारों दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और इस
0: इसके
1: हमारे
0: साथ ही,
1: बिल्कुल हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी, सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें, पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं, या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये सब चीजें करें।
0: बिल्कुल। और जो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है तो जहां भी आप देखे तो वहां पर आप उस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं जिससे
1: बिल्कुल
0: कि कीटाणु नहीं आएंगे, और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई करते रहे जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है धूल गर्दा जमा हो जाती। तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो, प्रोग्राम बातें करते करते समापन की ओर हो गया है,
1: बिल्कुल।
0: तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास आ गया है। आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमने श्रावण मास को समर्पित किया है और आपसे कोशिश की है सावन को लेकर कुछ बातें करने की। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दृश्य मनोरम वर्षा सावन, सलिल पवन संग चूम मगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरित धरे परिधान बदन, रमणी तरुणा अटखेल करत, सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत, दिग मानस रंजन सरस करे, रसधार गिरे घिरते बदरा, तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल भाव भरे बहुधा, सुरभित शर संधान करे। तो ये कविता आप सभी के नाम, और शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार,
1: हम प्रेमपाल गंगवार बोल रहे हैं नवाबगंज बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बरेली।

0: की क्या खूबी है बताइए शहर की। बचपन में हमने देखा कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में, कहते थे भी बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे उसको बैलगाड़ी बोलते थे, ये फेमस है। और अभी तो क्या कहते हैं सावन का महीना चल रहा है तो अभी भोलेनाथ की बरेली से भी जाना जाता है, हमारा नाथ नगरी बरेली।
0: अच्छा, तो आपके बरेली में क्या हो रहा है इन दिनों बताइए श्रावण मास में खास तौर से।
1: हम यही बताना चाहेंगे कि सोमवार को खैर बड़े भक्तों से जल चढ़ाते हैं कचला घाट से लाके भोले शंकर जी को, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, गर्मी हो रही है।
1: हाँ,
0: लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के ऊपर वो तो भक्त आ ही रहे हैं, और श्रावण मास में जो पूजा की जाती है वो तो कर ही रहे हैं ना मंदिरों में आके।
1: हाँ मैम जी, ये तो बात ठीक है, मंदिर में बड़ी प्रेम श्रद्धा से पूजा करते हैं। इतनी दूर लाइन लगती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है। जब तीसरा और जब चौथा सोमवार आता है सावन का तो बहुत लंबी कतार लग जाती है मैम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही श्रावण मास की खासियत भी है।
1: और भी जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे बरेली का सुरमा भी मशहूर है।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: जो आंखों में लगाते ही आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है,
0: आंखें कजरारी दिखने लग जाती है ना। बहुत अच्छा लगा, तो बताइए आपको
1: हाँ
0: कौन सा गीत सुनवाएं।
1: गाना रहेगा आई मिलन की रात का, सावन वाला आया है घटा से बरसा है पानी।
0: अरे वाह, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते। आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी हम तो आपकी आवाज फट से ही पहचानते हैं।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी डार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए हम भी आपकी आवाज पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामयिक के साथ और जो लिसनर्स है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा। ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है।
0: जी।
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार है आपके और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर में कैसा मौसम चल रहा है और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी तो ये बहुत ही बुरा हुआ है क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा चाहे वो यहाँ का डल लेक हो या यहाँ की जहलिम हो यहाँ का लेदर वैली हो तो उनमें बहुत पानी आया था तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
0: बहुत गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए तो और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं। अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा।
1: हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाली नस्ल है हमें उनके लिए ये जो हम क्लाइमेट है हमें उनके लिए बचा के रखना है।
0: बहुत अच्छे विचार आपके। और अब सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है मैं ना बोलूंगा मैं ना बोलूंगी।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सिक्किम गैंगटोक से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ मैडम।
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए, अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा हॉबी है। बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सखी शैली है ना, जिनमें आता है गीत माला नाचने वो उठाया गीत।
0: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा?
1: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब आकाशवाणी मनाते है और आदमी का चारों तरफ लेता है ना। सावन महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
0: जी।
1: ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, हजारा सावन बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर के आवाज में सिंदूर फिल्म।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटाच छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: रात तो हो रही थी बरसात।
0: अच्छा,
1: बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर, तो
0: हाँ
1: हम तो खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?
1: अपने तो मक्का और सोयाबीन है।
0: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
1: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
0: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
1: जी, बढ़िया होने वाली है। बार किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बार।
0: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
1: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
0: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात की।
1: हाँ, बहुत
0: पानी
1: सुंदर
0: को
1: लग रहा है। अभी मैं मक्का खेत में स्कोल किया मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
1: हाँ दीदी, मोबाइल पर सुनता हूँ मैं तो।
0: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे भरे खेत की और उन्हें कहीं भेजते हैं आप कि देखिए ऐसी हरियाली है?
1: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास, कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
0: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
1: हाँ, उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है हमारे रेडियो से, दोस्त जुड़ रहे हैं जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
0: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है?
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
1: दीदी आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
0: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से।
0: स्वागत है आपका, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पर थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहली बात मेरे को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा, कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें अगर याद है तो।
1: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस।
2: इस श्याने कर्म का क्या कहना, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने तो मैं बहुत अच्छे अच्छे गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना।
1: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैम,
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार,
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मैम।
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम, मक्का, धान, सोयाबीन।
0: और मौसम कैसा चल रहा है भाई? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
1: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
0: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
1: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।
0: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
1: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा। तो
0: पशुधन भी है?
1: काम करते हैं।
0: पशुधन भी है?
1: जी जी, गाय है।
0: कितनी गाय है?
1: 3-4 गाय है मेरे पास।
0: उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है?
1: खेती बाड़ी में चारा होता है, उसमें लाते हैं गत्ता बना बना के।
0: अच्छा, वो खा लेती हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, आप खेत खलिहान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
1: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो विविध भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
0: क्या बात है, इसीलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
1: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तानी का गीत सुनना चाहता हूँ मैम।
0: बताइए।
1: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से बोल रहा हूँ। मैडम जी, आपसे तो पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे, इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी?
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए, आज तो हो गई
1: जी। आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए विविध भारती के तो हेलो परमार, सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए।
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, क्या बात है। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है। अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद जी, मान लीजिए बारिश भी हो रही है अभी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा
1: जी।
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: फिर इसके बाद लगाएंगे धनिया, गेहूँ।
0: ये कब पक जाएगी फसल
1: जी? आ जाती है उधर गर्मी तक, आ जाती है होली तक।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में? वहीं रहते हैं आप?
1: हाँ, लगे रहते हैं जी। मान लीजिए
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं नहीं, अभी तो पास में ही है अपना खेत तो जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, तो बताइए, कुछ खास लग रहा है खेत खलिहान को देखकर? कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, यही विविध भारती सुनते हैं, चलता रहता है हमारा तो।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का
1: जी।
0: बताइए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म को सुनना है, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज में। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी कथा है जी वाला।
0: अरे, कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए 90 की तो सच्ची गीत पसंद करता हूँ जी। मान लीजिए हमारे दोस्तों की पसंद है।
0: चलिए, मान लिया हमने। ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारी शायद।
1: बिल्कुल,
0: देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम, तो बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी दीदी,
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है? क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है, आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर, ये बताइए हमें।
1: दीदी श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी, बहुत अच्छा,
0: अच्छा
1: मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कावड़ यात्रा भी जा रही है कहीं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता है दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी बात है दीदी की जो कावड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु अपनी तन मन धन से, उनको जगह जगह पंडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलहार की व्यवस्था रखते हैं, जल पानी जो भी चाहिए हो।
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं, उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं फिर, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं?
1: मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे कौन सी पेंटिंग?
1: ये वॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं, लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग

0: बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है निसुल्ताना रे, उसमें एक अंतरा बहुत अच्छा है दीदी।
2: बलम बबुआ बेदर्दी
0: सावन आया आजा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, ये मेरी भी पसंद का गीत है, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते।
0: अरे नाम बताइए।
1: सुनते
0: नाम तो बताइए अपना पहले।
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरिदास चांडवले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम अहिल्या नगर से बोल रहे हैं, शिरडी के बाजू में से।
0: स्वागत है।
1: आप सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे असिस्ट होता हमें कहाँ मिलेंगे?
1: कैसा है, भगवान की कृपा है।
0: अरे वाह,
1: लग गया हमारा फोन।
0: अच्छा बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर? झमाझम बारिश हुई?
1: तो बारिश कल परसों हो गया था। अच्छा
0: हाँ, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना है,
1: चालू है। कल परसों बारिश हो गया था, अभी आज बारिश नहीं है।
0: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
1: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या?
0: हाँ,
1: उसके बाद जो नारल बम्बई में गिरता है उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है।
0: अच्छा,
1: पर्ची का बारिश बोलते।
0: अच्छा
1: इधर अहिल्या नगर में

0: लाइब्रेरी के पढ़ते नहीं है।
1: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
0: अभी क्या करते हैं, अभी वो कैसा है, सिरूर सितरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है भीमाशंकर पूना बम्बई कोकण, वो भाग में बारिश ज्यादा होता है।
1: समझ गई मैं,
0: इधर बोले तो ये माथे पे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई हमको कि किस तरह का मौसम
0: रहता है। अभी ये पहले से जो भगवान ने लगाया है,
1: हाँ,
0: रीत रिवाज,
1: हाँ,
0: वो चलते आने वाला रीत रिवाज से चलता है, और उसकी मर्जी भी अगर कुछ होता नहीं।
1: क्या बात कही
0: मराठी मध्य एक आभंग है, अरे अरे मानस साधू वेड़ा का खोला रे,
1: देवा
0: पुढ़े मानूस पाला पातोला रे, घड़ी घड़ी नहीं कुनाचा भरोसा, तुला कोण देईन मनाचा दिला।
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घड़ी भर का भरोसा नहीं है। तो आपने जिंदगी के अनुभव ले लिए हैं और अब जिंदगी को आप उसी तरह से
0: तुमको बोलू क्या, सिलोन लाल का रेडू था, उसके पास भी धरती पे आपके जय माला करके कार्यक्रम आते थे
1: जी।
0: अभी तो हेलो गीत बाहर एक ही दिन रहता है, हमारा सवा छेकू भजन संध्या कार्यक्रम लगता है, भक्ति संगीत हवा महल, हम सब कार्यक्रम आपके सुनते हैं।
1: बहुत सुंदर,
0: और हमारा दिनचर्या भी अच्छा जाता है
1: जी। बिल्कुल, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का गीत, हमें कौन सा गीत सुनेंगे?
0: मेरा पसंदीदा गाना है शिरडी के साई बाबा का।
1: अरे वाह, कौन सा?
0: आया हूँ तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साई बाबा।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिमरी कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और ड्यूटी पीरियड में ही मैं आपके कार्यक्रम में कई दिन से फोन कर रहा था, लग नहीं रहा था, लग गया आज, बहुत खुशी हुआ मैडम, बातचीत हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या ड्यूटी परेड क्या कह रहे हैं आप?
1: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोनिंग में, लाइव में, ईमेल में और सब में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, और आपका कार्यक्रम में आज फोन किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बातचीत हो रहा है। और आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है भाग मिल्का भाग, और गीत के बोल है मस्तों का झूल और गायक है दिव्या कुमार।
0: चलिए ये गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तो एक आध बात तो कर लीजिए हमसे।
1: हाँ आराम से मैडम बोलिए।
0: हाँ आप बताइए क्या करते हैं, मतलब कैसा आपका वक्त निकलता है, मौसम में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपके शहर में बारिश हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब सावन आता है तो हरियाली छा जाती है।
1: जी यहाँ पर मौसम एकदम मैडम अभी बादल किया हुआ है, उमस टाइप की गर्मी है, और मतलब कि हल्का मतलब लाइटिंग बादल है वो किया है, सूर्य की रोशनी है बादल किया है, लेकिन ये पानी गिरने के कगार में, क्योंकि जब उमस गर्मी होता है मैडम तो पानी गिरता है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो उस अनुसार ही पानी गिरता है।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य

श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम FM 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आज आपके साथ आपका रेडियो हम सफर कपिल गौतम। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इतिहास की कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे क्षण हैं जो वक्त के अनुसार याद आते हैं। ऐसी एक घटना 1945 में 6 अगस्त यानी आज के दिन हुई थी। तो आइए बात करते हैं इस ऐतिहासिक घटना पर। दोस्तों, जब जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था तो इस त्रासदी में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनेक पीढ़ियां इसके दुष्प्रभाव से प्रभावित हुईं। दोस्तों, हिरोशिमा दिवस केवल इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह विश्व शांति, मानवता और अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर भी है। परमाणु हथियार किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए गंभीरता का खतरा भी है। श्रोताओं, इसलिए हमें ऐसे विश्व के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए जहां संवाद, संयोग और आपसी विश्वास के माध्यम से मतभेदों का समाधान हो। श्रोताओं, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें शांति और भाईचारे के मूल्यों को अपनाना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी यह समझना होगा कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। तो श्रोताओं, आइए हिरोशिमा दिवस पर हम सभी, हर व्यक्ति, हर एक युवा मिलकर एक परमाणु मुक्त, शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व के निर्माण का संकल्प लें। दोस्तों, हम सभी युवाओं को हमेशा संगठित रहना चाहिए, क्योंकि एकता ही एक समृद्ध और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती है। साथियों, हम सभी नागरिकों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जिससे कि कोई भी

0: ताकत हमें पराजित ना कर सके। वो कहावत तो आप सभी ने दोस्तों सुनी ही होगी कि जब एक लकड़ी होती है तो वह आसानी से टूट जाती है जब उसे तोड़ते हैं, और वही जब हम पांच लकड़ी ले लेते हैं और फिर उन्हें तोड़ते हैं तो काफी ज्यादा जोर और ताकत लगती है। इसलिए संगठन में सबसे ज्यादा मजबूती होती है। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं आप सभी को वार्ता, जिससे कि हम और आप और भी प्रेरित हो सकें। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये वार्ता जिसका विषय है राष्ट्रीय एकता में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद्रकांत अवस्थी।
1: तलवारों की धारों पर देश की आजादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। देश की एकात्मता, विकास आदि सभी विषयों पर युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। यदि इतिहास के पन्ने को पलटें तो स्पष्ट होता है कि देश में एकात्मता का महत्वपूर्ण प्रयास सदैव युवाओं ने ही आगे बढ़ाया है। आदि शंकराचार्य ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए 8 वर्ष की अल्पायु में घर त्याग कर संन्यास लिया व संपूर्ण भारत की परिक्रमा 3 बार की और 4 मठों की स्थापना कर देशवासियों को उनकी यात्रा के महत्व को स्पष्ट किया। जैसे गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वरम का अभिषेक करना और रामेश्वरम की रज लेकर प्रयागराज के संगम में डालना, साथ ही जगन्नाथ जी की छड़ द्वारिकाधीश को समर्पित करना, यह पुण्यकारी है। यह सारा उपक्रम धार्मिकता से जोड़कर राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश दिया गया। यह संपूर्ण एकात्मता का सूत्र सुसज्जित कर शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में समाधिस्थ हो गए। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति व ज्ञान आध्यात्म का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया व युवाओं को आह्वान किया कि वे देश की एकात्मता के लिए प्राणपण से जुटे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे युवाओं ने बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण देश का भ्रमण कर देश को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक किया व पूरी शक्ति से स्वतंत्रता के योग में योगदान दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। भारत एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वरन यह एक जीवंत चेतना है, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ विविधता के रंगों का अद्वितीय संगम बनते देखा जा सकता है। कहीं गंगा की धारा है तो कहीं हिमालय प्रहरी की तरह सिर उठाए देश की रक्षा कर रहा है, कहीं मरुस्थल की तपन का तो कहीं समुद्र की लहरों का शीतल समीर बह रहा है। विविध भाषाएं, विविध पोशाक, रीति रिवाज की विविधता है, परंतु सभी में एक समान भाव राष्ट्रीय एकता का प्रवाहित होता है। हम सब भारत माता के पुत्र हैं, यह हमारी राष्ट्रीय एकता का भाव है। इस एकता के भाव को सतत प्रवाहमय जीवंत बनाए रखने का कार्य केवल सरकार व प्रशासन का नहीं है, यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता के को अक्षुण बनाए रखने के लिए विशेषता युवा वर्ग में यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस दिशा में सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ें। युवाओं की कार्यशैली, विचार, सोच, दृष्टिकोण देश को दिशा देने का कार्य करती है। युवा वही जो निस्वार्थ भाव से देश व समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। जाति, पंथ, भाषा ये सभी भेदभाव को भुलाकर युवाओं को देश की विकास की धारा को आगे बढ़ाने हेतु आगे आना चाहिए, तभी देश विश्व गुरु के स्थान पर पुनर्स्थापित हो सकेगा। वसुदेव कुटुम्बकम का भाव इस दिशा में आदर्श वाक्य हो सकता है। भारतीय खिलाड़ियों के श्रेष्ठ उदाहरण इस समग्र में देखे जा सकते हैं। आज युवा शिक्षा, विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण भारत विश्व मंच पर एक सशक्त, शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है। युवा शक्ति देश की एकात्मता के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, परंतु इसमें एक और शर्त है कि युवाओं को वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन, अनुभव मिलना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी आगे बढ़ने में कहीं चूक न कर सके। क्योंकि इतिहास जहां युवाओं के योगदान का विश्लेषण करता है, तो उसके मार्गदर्शक या गुरुओं को भी सदैव स्मरण करता है।

0: जैसे आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गुरु गोविंद पाद, विवेकानंद के गुरु परमहंस रामकृष्ण, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, इन्होंने इनको एक सशक्त मार्गदर्शन दिया जिसके कारण विश्व मंच पर वे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। जब युवाओं को अनुभवी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलता है तो एकात्मता व विकास की गति तीव्र हो जाती है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों वरिष्ठ गुरुजनों का अनुभव युवाओं के जोश व शक्ति से जब मिलकर राष्ट्रीय विषयों पर केंद्रित होता है तो देश विकास के पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ता है, साथ ही अपनी संपूर्ण जनता को एकता संस्कृति संस्कार के धागे में पिरोए रखने में समर्थ होता है। वह ऊर्जा इस कार्य में तेजी से लगती है। जिस देश में युवा वर्ग राष्ट्र के प्रति समर्पित व जागृत रहते हैं उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता। यदि युवा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सुख समृद्धि के लिए विचार करने लगे तो देश हित की ओर आकर्षित नहीं होते, उनमें पलायन के भाव जागृत हो जाते हैं और राष्ट्रीय एकात्मता ओझिल हो जाती है। राष्ट्र प्रथम का भाव ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस ओर अधिक आकर्षित करते हैं। वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्वदेशी पर जोर देते हैं, जिसके कारण देश आत्मनिर्भरता के साथ साथ मजबूत एकता के सूत्र में बंध रहा है। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, राष्ट्रभक्ति हित जगे, है हमारी भावना, है हमारी भावना। यही कामना के साथ यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि युवा शक्ति को यदि उचित मार्गदर्शन न मिले जिसके परिणाम विध्वंसकारी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक विषय के दो पक्ष होते हैं, यदि डोर का एक सिरा है तो दूसरा अवश्य ही होगा। युवाओं में जोश व ऊर्जा भरपूर होती है, वे जिस दिशा की ओर अग्रसर हो जाएं वहां चमत्कार हो जाता है, परंतु जोश में होश की आवश्यकता आवश्यक है, इसलिए उचित गुरु या मार्गदर्शक आवश्यक है। अन्यथा विश्व के कई देशों में ऐसा भी देखा गया है जहां युवाओं को गलत मार्गदर्शक मिले, उन युवाओं ने मानवता को शर्मसार कर दिया। हम ऐसे अनेक उदाहरण देख सकते हैं विश्व में। ऐसे युवा आगे चलकर सामान्य जनमानस का जीना दूभर कर देते हैं, परिणाम स्वरूप वहां की सरकारों को उनके प्रति सख्त कदम उठाने पड़े व उन्हें दंडित करना पड़ा। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि युवा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिन्हें यदि सही रूप से आकार दिया जाए तो विश्व का स्वरूप बदल सकता है। इसलिए गुरु आवश्यक है, यह भी आवश्यक है कि सच्चा गुरु हो। इसलिए भारत में यह कहा जाता है, पानी पिए छान कर गुरु करे जानकर। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। आज देश में युवा वर्ग प्रत्येक क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, चाहे वह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, खेल, अंतरिक्ष विज्ञान, सौर ऊर्जा, मनोरंजन इत्यादि कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ युवा अपना परचम लहरा रहे हैं। वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति में पिछले वर्षों में अत्यधिक परिवर्तन आए हैं। हमारी भारत सरकार ने युवाओं पर अधिक विश्वास रखा है, उन्हें प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। हमने यह भी देखा कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के कारण ही आज हमारे खिलाड़ी जहां भी जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो या कोई भी खेल हो, वहां पदक जीत कर लाते हैं। अन्यथा कभी ऐसी स्थिति भी थी कि पदक के नाम पर शून्य या आधा एक आधा पदक मिलता था। खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री स्वयं मिलते हैं, इससे उन्हें नव संचार होता है और वे प्राणपण से देश के लिए खेलते हैं, जिसके परिणाम सामने आते हैं। युवाओं को राष्ट्र निर्माण व राष्ट्रीय एकात्मता की धारा में लगाना यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक दूरदर्शी योजनाबद्ध कार्य है। बच्चे को जन्म से ऐसे संस्कार व शिक्षा दी जानी चाहिए कि बच्चे की पहली पाठशाला परिवार होता है, इसलिए उसको वहीं परिवार में ही संस्कारित किया जाना चाहिए। बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, वहां से वह कार्य प्रारंभ होता है और धीरे धीरे वृद्धि कर देश व समाज की एकता के लिए एक फलदार वृक्ष के रूप में वह स्थापित होता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण शिवाजी की माता जीजाबाई का है, जिन्होंने शिवाजी को ऐसे संस्कारित किया कि वे देश को एकता के सूत्र में बांधने में सफल हो सके। इसलिए हम यह युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे आगे आएं और भाईचारे को, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें और युवाओं को अपनी पूर्ण शक्ति से देश की एकात्मता, अखंडता को अक्षुण रखने के लिए आगे आना चाहिए, कार्य करना चाहिए, देश की एकता के लिए अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। और यदि देश एक रहेगा, देश की एकात्मता बनी रहेगी, तो देश सुख, समृद्धि और अपने सभी लक्ष्यों को पा सकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश, भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। जय हिंद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी यह वार्ता, जिसका विषय था राष्ट्रीय एकता में युवाओं की भूमिका, जिसमें वार्ताकार थे डॉक्टर चंद्रकांत अवस्थी। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आप सभी को एक फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म न्यूयॉर्क से, जिसमें आवाज है के वास साथियों की। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
2: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
3: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
4: लब जा गले के फिर हसी रात,
2: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: ही हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।

0: श्रोताओं, इस गीत को लिया था फिल्म न्यूयॉर्क से, जिसमें आवाजें थी के वाह शाहतियों की। दोस्तों, जल प्रकृति का अनमोल उपहार और मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। पृथ्वी पर जल मौजूद प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य के अस्तित्व के लिए जल आवश्यक है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है दोस्तों। यही कारण है कि जल को जीवन का पर्याय कहा जाता है। आज बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जल के अंधाधुंध दोहन के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। यदि हम आज जल संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। श्रोताओं, जल बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। वर्षा जल संचयन अपनाना, नलों को हम खुला ना छोड़ना और जल का सोच समझ कर सही तरीके से इस्तेमाल करना और नदियों, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखना हमारे छोटे छोटे प्रभावी कदम हैं। साथियों, हम सभी को जल की हर बूंद का सम्मान करना चाहिए और दूसरों को भी इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। जल सुरक्षित रहेगा तभी प्रकृति संतुलित रहेगी और मानव जीवन समृद्ध तथा स्वस्थ बनेगा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें करने के साथ साथ लेते हैं एक और ब्रेक।
1: सुनिए सुनिए सुनिए, 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 तक आकाशवाणी झांसी पर।
2: मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार

0: ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
2: अरे?
3: डिजिटल अरेस्ट।

0: लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कार्यक्रम में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह की, जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उन्होंने राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के सहयोग से पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों जैसे जौहल और तालाबों को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से अनेक सूखी नदियां फिर से नदियों में पानी बहने लगा और हजारों गांवों में जल संकट कम हुआ। श्रोताओं, राजेंद्र सिंह का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि यदि लोग मिलकर जल स्रोतों की रक्षा करें तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे जल क्षेत्र का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। श्रोताओं, उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, सामूहिक प्रयास और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता से बड़ा परिवर्तन संभव है। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम में एक और फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तमाशा से, जिसमें आवाज है लकी अली की।

श्रोताओं, तमाशा फिल्म से लिया गया गीत जिसमें आवाज थी लकी अली की। दोस्तों, समय जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। धन, वस्तुएं और अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा गया है कि जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। दोस्तों, समय का सही उपयोग हमें सफलता, अनुशासन और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। जो लोग अपने कार्य समय पर पूरा करते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। वही टाल मटोल की आदत हमारे लक्ष्य को दूर कर देती है और हमारे हाथों से अवसर निकल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल करें, समय के साथ चलें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो जल्दी से उठाइए पेन और पेपर और कार्यक्रम से जुड़े सुझाव पत्र भेजने के लिए कार्यक्रम का पता नोट कीजिए। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। तो अगली बार फिर होगी मुलाकात इसी वादे के साथ। अपने रेडियो हम सफर कपिल गौतम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना दैनिक मनचाहा कार्यक्रम युववाणी एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।
1: विविधा

0: лебеда.
1: विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज की उनकी दोस्त प्रीति सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर में 6 अगस्त यानी आज ही के दिन परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लाखों निर्दोषों लोगों की जान का नुकसान हुआ, कितने ही घर तबाह हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध का वो काला दिन सभी की आंखें नम कर गया। जापान बहुत ही शक्तिशाली देश था, लेकिन लिटिल बॉय नामक बम के गिरते ही हिरोशिमा में 4000 डिग्री की गर्मी पैदा हुई, जिसे देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो गया। युद्ध हमेशा के लिए ही हमें ये संदेश देके गया कि युद्ध, लड़ाई, झगड़ा कभी भी अच्छाई या सुकून लेकर नहीं, वरन विनाश लेके ही आता है। इसलिए शांति के रास्ते पे चलना ही सुखद जीवन का मूल मंत्र है। श्रोताओं, आजकल हम सभी बैंक की सुविधाएं किसी ना किसी रूप में लिए हुए हैं, और ऑनलाइन सुविधा तो शायद ही है कि कोई हम में से कोई भी इस्तेमाल ना कर रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां ये हमें आसानी देती है कि घर बैठे या सफर में कभी भी हम पैसों की जरूरत को पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये कितना और कैसे सुरक्षित है या परेशानी का कारण बन सकता है, इसकी जानकारी हम सभी को ना के बराबर है, या यूं कहें कि हम अनभिज्ञ हैं। तो चलिए आज हम आपको देते हैं इसकी जानकारी और सुनवा रहे हैं एक भेंटवार्ता, साइबर सुरक्षा, सतर्क ग्राहक, सुरक्षित बैंक। भेंटवार्ता सुबोध कुमार गोप से, जो कि उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झांसी से हैं।
2: साइबर सुरक्षा, सतर्क ग्राहक, सुरक्षित बैंक। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में जहां बैंकिंग हमारी उंगलियों पर आ चुकी है, वहीं पर साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय साइबर सुरक्षा, सतर्क ग्राहक, सुरक्षित बैंक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार गोप जी। स्वागत है आपका आकाशवाणी के झांसी स्टूडियो में। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अल्पा श्रीवास्तव।
1: नमस्कार मैडम, मैं हूं सुबोध कुमार गोप। जैसे मैडम ने बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झांसी मंडल के डेप्यूटी जनरल मैनेजर पोस्ट में है।
0: जी जी सुबोध जी, और हम आपसे यही सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज के डिजिटल युग में जब बैंकिंग सेवाएं उंगलियों पर है, साइबर सुरक्षा बैंक और ग्राहक दोनों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है।
1: जैसे कि मैंने बताना चाहूंगा, जो डिजिटल बैंकिंग हमारा जो लाइफ को इतना इजी कर दिया है, उसके साथ साथ इसपे क्या होता है ना, बहुत चैलेंजेस भी खड़े कर दिए हैं, और बैंक के लिए भी और ग्राहकों के लिए भी। बैंकों के लिए चैलेंजेस ये है कि हमारा जो डाटा ब्रीच हो जाता है इसमें, मतलब ये हुआ कि जो डाटा चोरी हो जाती है, डाटा ब्रीच मीन्स साइबर क्राइम जो करते हैं वो लोग डाटा चोरी करते हैं, तो इसमें बैंक के ऊपर जो ट्रस्ट है ना, वो लोगों के कम हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा कॉस्ट है, क्योंकि ये जो इतना साइबर क्राइम्स हो रहा है इसमें आप बैंक को अपडेट करना पड़ता है अपने सिस्टम्स को
0: जी।
1: तो उससे बैंक का कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। तीसरा है कि रैंसम जो अटैक होते हैं उसमें काफी लोगों के जो फिरौती मांगना जो होता है ना, रैंसम वेयर अटैक, उसमें लोगों का काफी पैसा निकल जाता है, तो इसमें बैंकिंग सिस्टम को लोग लॉक कर देते हैं इससे।
0: जी हाँ, मतलब आज के समय में बैंक और ग्राहक दोनों के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल होने के बाद साइबर अपराधों के ग्राफ में किस तरह का बदलाव आया है।
1: जैसे इसमें हम बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ क्राइम्स, ये अगर आप 2022-23 से अगर कंपेयर करेंगे 2023 से, उससे इसका 3 times हो चुका है 2026 में अगर हम आएंगे तो। जब ये 2021-22 में ये था 52,974, अभी ये बढ़कर 1 lakh से ऊपर हो चुका है।
0: मतलब
1: ज्यादा बढ़ गए। और इसमें दिखा जा रहा है अभी, जो पहले होता था कि लो हाई वैल्यू और हाई फ्रीक्वेंसी होता था, बट अभी क्या है, लो वैल्यू और उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जैसे लोगों को पहले कोई किसी का 10 lakh रुपया चुरा लिया, लेकिन अभी क्या होता है, छोटे छोटे अमाउंट में लेते हैं, 5,000 लिया, बट नंबर ऑफ जो क्राइम्स होंगे ना, इट विल बी मोर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा। तो उसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं।
0: किस तरह से हो जाता है और कस्टमर को ही पता ही नहीं चलता।
1: पता ही नहीं चलता है। जैसे इसमें आपको एक बता दें, डिजिटल अरेस्ट होता है आजकल लोगों का, देन म्यूल अकाउंट्स आप लोग सुने होंगे। म्यूल अकाउंट्स मतलब आपका अकाउंट का सहारा लेके उसमें लोगों को पैसा जमा दिया जाता है, मतलब उस अकाउंट में पैसा जमा देते हैं, उससे निकल लेते हैं, आप पता ही नहीं चलता है।
0: जी हाँ,
1: सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मतलब इसलिए बोला जाता है ना, जो जब अकाउंट खुलना है तो बैंक को बोला गया है कि काफी उसमें जो लोगों का KYC प्रॉपरली चेक करते हैं हम लोग, इसलिए आजकल तो ये म्यूल अकाउंट बहुत नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अभी।
0: सुबोध जी, वर्तमान में बैंक ग्राहकों के सामने सबसे बड़े खतरे कौन से हैं?
1: अभी अगर देखेंगे तो 5 सबसे बड़े खतरे मेरे नजर से। एक तो होता है AI पावर्ड डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग। मतलब जैसे आप AI से क्या होता है ना, आपका इमेज हुबहू ऐसे ही बना देंगे वो लोग, और उसमें वॉइस क्लोनिंग भी आप ही के जैसे ही करेंगे, और फोन करेंगे आपके घर में कि आपका बेटा का ये हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ
0: घटनाएं
1: आते हैं
0: है,
1: और उससे वो लोग आपको पैसा मांगेंगे, फिरौती मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो देन इट विल बी रेपुटेशनल लॉस आपको लेगा। तो ये एक हो गया। दूसरा डिजिटल अरेस्ट करते हैं, कुछ भी बहाना देके आपको CBI के या पुलिस का या नार्कोटिक्स के इस तरह का ऑफिसर बन के आपको बोलते हैं कि आपको आपने ये क्राइम किया है, और इससे अगर ये आप पैसा नहीं भेजेंगे तो आपको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे।
0: हाँ।
1: बट जबकि ये डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं है, है ना, ये एक फेक चीज है, बट लोगों को समझ में नहीं आता, हम लोग जनरली पब्लिक का अवेयरनेस नहीं
0: हो जाता है। लेकिन
1: दूसरा जैसे मैंने बताया, म्यूल नेटवर्क बहुत बड़ा है, म्यूल अकाउंट हो गया। देन एडवांस सोशल इंजीनियरिंग, मतलब होता है कि आपको ऐसे मैसेज आएगा जो कि लगेगा कि स्टेट बैंक से ही भेजा जा रहा है
0: जी,
1: बट वो स्टेट बैंक से नहीं होगा
0: जी।
1: उसी जैसा SBI.co.in सपोज होगा, उसके लुक लाइक साइट आता है
0: जी,
1: जैसे उसमें
0: अलग
1: साइट होती है, तो उसमें आप लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और कोई भी लिंक क्लिक कर देता है। चौथा है कि बैंकिंग ट्रोजन्स, इसमें क्या होता है, एक वायरस घुस जाता है आपका मोबाइल में और आपका जितना ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है उसको पढ़ लेते हैं, और उससे आप OTP वगैरह अगर कुछ मोबाइल में सेव्ड है या आपको कहीं रखा है तो उसको लोग चोरी कर लेता है। तो इसका जो सुरक्षित होने का है कि आपको डाउट होना जरूरी है आपके मन में। देन कोई अगर वीडियो कॉल आपके पास आता है व्हाट्सएप में, आप उसको कट कर दीजिए और दोबारा उसको कॉल बैक कीजिए, अगर वो फेक होगा ना तो नहीं उठेगा, वीडियो कॉल नहीं हो पाएगा
0: जी।
1: सिमिलरली और एक चीज है, ऐप परमिशन, जब हम लोग क्या

0: करते ना, कोई भी डाउनलोड करते मोबाइल में, उसमें देखा जाता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ कर दीजिए, SMS, ये सब नहीं करना, उसको अलाउ नहीं करना उसमें
1: जी,
0: एप्स में
1: आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।
0: या
1: सुबोध जी, अक्सर ठग बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों को कॉल करते हैं, एक आम ग्राहक असली और फर्जी कॉल के बीच में अंतर कैसे पता करे?
0: इसमें मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो देयर इज अ गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल है कि आपको जो नकली अधिकारी होगा ना, फर्स्ट जो, वो आपको प्यार से नहीं बोलेगा
1: जी,
0: आपको पहले ही क्या करेगा, वो पहले से आपको OTP या CVV या नेट बैंकिंग पासवर्ड पहले मांगेगा
1: जी।
0: जो बैंक की अथॉरिटी होते हैं ना, वो ये सब चीज नहीं मांगते
1: हैं।
0: दूसरा है कि भाषा के और बातचीत के लहजा, जो लोग बोलते हैं ना नकली अधिकारी, आपको डराकर धमकाकर ये बोलेंगे कि 5 मिनट का अगर आप नहीं देते हैं
1: जी, हाँ।
0: तो आपका ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट, जबकि असली अधिकारी ये सब नहीं करते हैं
1: जी,
0: बैंक
1: हाँ।
0: के जो कॉल जाएगा
1: जी,
0: ये नहीं होगा
1: जी।
0: और ये जो होता है, और एक कॉल या उद्देश्य का वेरिफिकेशन, मतलब होता है कि जो नकली अधिकारी होंगे ना, वो कॉल की शुरुआत आपकी निजी जानकारी से ही पूछेंगे। जैसे वो नकली अगर बोलेगा कि OTP बता दीजिए, हम लोग जब कॉल करते हैं इस बैंक से जनरली ये सब नहीं पूछते हैं सब
1: जी, हाँ।
0: सो ये सब तरीका है, सो ये सब अगर लोग थोड़ा ध्यान देंगे, एक्चुअली क्या है ना, अभी लोगों का जानकारी बहुत कम है इस सब चीजों में, माने झांसे में आ जाते हैं जो नकली कॉल्स आते हैं ना
1: जी।
0: उसमें सपोज और एक आता है कि बोलेगा कि आप अगर आज ये नहीं करेंगे 5 मिनट के अंदर तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा
1: जी, हाँ।
0: ये
1: और उनकी
0: इससे नहीं डरना,
1: लापरवाही परेशानी का कारण बन जाती है।
0: यस
1: जी,
0: तो इसमें अगर मैं बोलूंगा कि क्या आप करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई अगर OTP मांगे तो तुरंत कॉल काट दीजिए, कोई अगर बोलता है कि ब्लॉक हो जाएगा तो कॉल काट दीजिए उसको और अपने बैंक में कॉन्टेक्ट कीजिए कि आपने कॉल बैंक से कॉल आया था क्या, अगर वो वेरिफिकेशन अगर बैंक से आया है तो बैंक वाले तो बोलेंगे कि आया है, जनरली ये नहीं होता है, 99% में होता है कि वो फेक कॉल ही होते हैं। तीसरा, कोई लिंक अगर आता है आपके पास तुरंत क्लिक ना करें उसको, उसको पढ़ी पढ़िए अच्छा से कि क्या लिंक है, उसको रीवेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही क्लिक कीजिए,
1: पूरी जानकारी लीजिए,
0: और कोई भी पर्सनल ऐप डाउनलोड ना कीजिए, जो अनजान अपना आप जब जिसके बारे में नहीं जानते उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसमें ऑप्शन बंद कर दीजिएगा
1: जी, हाँ।
0: ये सब
1: सुबोध जी, आजकल सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पर आने वाले लुभावने लिंक्स, जैसे पुरस्कार जीते या KYC अपडेट करें, इससे बैंक खाते को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसमें लोगों को जानकारी नहीं होता है, सपोज कोई लिंक आ गया या तो एक जैसे कि आप बोले फर्स्ट लिंक होगा ना, सपोज SBI हमारा जो एक्चुअल स्टेट बैंक का जो साइट होता है SBI.CO.IN पर लगा नकली होगा तो वो लोग हो सकता है उसमें लिखेंगे, आपको जो मैसेज भेजेंगे SBI KYC update.com, SBI support portal.in, RBI.gmail.com, इस टाइप का हमने भी देखा है, इस तरह के बहुत सारे आते हैं। और एक होता है HTTPS, मैंने हाइपर जो सिक्योर्ड वेबसाइट है
1: जी, जी।
0: उसमें HTTPS नहीं होगा, HTTP होगा उसका, जिसका फर्स्ट आया होगा। और कभी कभी आता है आपका, देखिएगा bit.ly, काफी सारे मैसेज आते होंगे, आप लोग चेक करेंगे तो देखिएगा आपको bit.ly, उससे सावधान रहिएगा। वो जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम, इसके पीछे और एक साइट है, अगर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको गलत साइट पे ले जाएगा, तो इस टाइप का साइट को आप लोगों को चेक करना है। जैसे और एक आता है tinyurl.com, तो ये होता है सर्टेन लिंक्स, तो इसको क्या करना है, uncertain.it करके एक ऐप है
1: जी,
0: उसमें एक वेबसाइट है, उसमें जाके अगर ये bit.ly जो लिंक आया है आपका मैसेज में उसको चेक करेंगे ना, तो आपको असली वेबसाइट क्या है वो पता चल जाएगा, ये एक है। तीसरा है कि मैसेज में इमोशनल ट्रिगर को पहचानिए, सपोज कोई बोलेगा कि आप अगर इसको क्लिक कर दोगे ना आप, तो आप 1 लाख रुपया मिल जाएगा
1: जी, हाँ।
0: या 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, जैसे कोई बोलता है ना, कोई मैसेज आता है आपको 6,000 रुपीज का रिचार्ज मिला
1: जी।
0: है, या फिर 5,000 का घर बैठे 5,000 रुपीज रोज कमाए,
1: आप हमारे बहुत अच्छे ग्राहक हैं,
0: बहुत कुछ आता है, तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान देना, मतलब कोई भी इसमें जैसे ही आप थोड़ा सा भी लुभावना चीजों में फंस जाएंगे ना, तो ये सब फ्रॉड होता
1: है।
0: और एक चीज है कि अभी के मैं बोलूंगा कि आपका जो ब्राउजर और डिवाइस की इसको चेक करने का दो चीज है, एक तो 2FA बोल के है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दूसरा है सेफ ब्राउजिंग ऑप्शन आप चुनिए हमेशा मोबाइल में, और अनजान ऐप से बचें, कोई भी जो अननोन ऐप है उसे कभी भी डाउनलोड ना करें। काफी सारे आप देखिएगा अभी फेसबुक वगैरह में जो सोशल मीडिया में, अब जैसे कि जाएंगे ना जो रील्स देखते हैं उस टाइम में आपको बोलता है इंस्टॉल,

0: सकते हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटी हैं। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टेट बैंक के कस्टमर से कि आप लोग स्टेट बैंक योनो आप यूज कीजिए, और उसमें इस तरह का धोखाधड़ी बाई चांस अगर हो जाता है उससे आप ब्लॉक भी कर सकते हैं,
1: क्योंकि कई बार ग्राहकों के छोटे छोटे जैसे कि 10,000 निकल गए, 10,000 निकल गए, लेकिन जैसे ही पहला नोटिफिकेशन आता है तो आप तुरंत जागरूक हो जाए, तुरंत अपने बैंक को आप सूचना दे।
0: और उसके बाद आप करना है क्या, जैसे 1930 में किए बैंक को किए, उसके बाद साइबर क्राइम पोर्टल है
1: जी,
0: साइबर क्राइम उसका जो ये वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, इस पे तुरंत उसको दर्ज कीजिए। दर्ज कैसे करना है, जो आपने ट्रांजेक्शन किया उसका ट्रांजेक्शन आईडी, आपका अकाउंट नंबर, ये सब देके उसमें भेजिए, तो वहां से तुरंत आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि हमने रिकॉर्ड इसको कर लिया है
1: जी।
0: और आपका और नेक्स्ट स्टेप होता है, आप जैसे ही ऐसे होता है आपका पासवर्ड और पिन तुरंत बदलें, और नेक्स्ट सबसे जरूरी है अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो आपका नियर बाय जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें जाइए और इसका शिकायत दर्ज करें। ये सब अगर आप करेंगे तो रिकवरी तुरंत हो सकता है, तो देखा जाता है कि रिकवरी बहुत ज्यादा केस में नहीं हो पाता इमीडिएटली, बट ये हेल्प करेगा लोग
1: जी। साइबर हेल्पलाइन नंबर और बैंक के हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है?
0: ना इसमें जैसे कि आप आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो बैंक के साथ आपका जो लिंक किए हैं मोबाइल नंबर, उसमें 1930 में डायल करें, पहला तो कॉल करें
1: जी,
0: और 1930 जैसे ही कॉल कीजिएगा पूछेगा आपका नाम, मोबाइल नंबर और ट्रांजेक्शन की राशि, ये सब पूछता है, तो उसका डिटेल विवरण दें आप लोग
1: जी।
0: देन आपका ट्रांजेक्शन आईडी, आपने बैंक में जो जो एसएमएस आएगा आपका अकाउंट में, उस एसएमएस को 12 डिजिट का एक ट्रांजेक्शन आईडी होते हैं
1: जी,
0: उसको आप वहां पे बताइए। देन पोर्टल पे जैसे ही आप ये सब रजिस्टर करिएगा, पोर्टल पे एक एक्नोलेज आएगा, एक्नोलेजमेंट आएगा, उसको बोलते हैं कंप्लेंट आईडी, उस कंप्लेंट आईडी को नोट करके रखिए, और 24 आवर्स के अंदर जो मैंने बताया था पहले ही cybercrime.gov.in जो साइट है उसमें उसको रजिस्टर्ड करना है, ये सब डिटेल चीजों के साथ, जैसे आपका अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी और ये कंप्लेंट आईडी, ये सब उसको देना होगा।
1: तो इन हेल्पलाइन नंबर पर यदि ग्राहक इनका सूचना देता है बैंक को, तो जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है उससे आप बच सकते हैं और आपको सुरक्षा भी मिल सकती है।
0: जैसे बैंक हेल्पलाइन में आपको फिर एक ही चीज है, सही नंबर का पहचान करना है। बैंक हेल्पलाइन के जो नंबर होता है ना, जनरली अभी हम लोगों का जो स्टेट बैंक का नंबर है मैं बताता हूँ, उसमें 1600 से स्टार्ट होता है, अगर बैंक से कॉल आता है जो रिपोर्टिंग करने का है, 1800-1234 SBI का जो है नंबर, उसमें कॉल कीजिए और आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ है अकाउंट रिलेटेड आप इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए, आपका तुरंत उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा
1: जी।
0: सो ये सुविधाएं सब बैंक का अलग अलग है, तो स्टेट बैंक का मैंने बताया 1800-1234।
1: इन हेल्पलाइन नंबरों से हमारे ग्राहकों को सुविधा मिल सकती है, और वो अपने इनका
0: जो भी कॉल करें तो रेफरेंस नंबर जरूर लें। मेरा मेरे कस्टमर से बनना है कि आप जब भी कोई भी शिकायत दर्ज करते हैं तो उसका रेफरेंस नंबर लेके उसको नोटिंग करके रखें, ताकि फ्यूचर में आपको वो अगर आपके पास भी कॉल आएगा, बैंक से भी कॉल आएगा, तो आप उसको बताएं।
1: सुबोध जी, वरिष्ठ नागरिकों और कम शिक्षित वर्ग को साइबर ठगी से बचाने के लिए बैंक किस तरह से जागरूकता कार्यक्रम या कार्यशालाएं आयोजित करता है?
0: हाँ, ये तो हम लोग रेगुलरली करते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांच है हम लोग उसमें जो सीनियर सिटीजन पर्टिकुलरली अभी जो सबसे ज्यादा जिसमें जो साइबर क्राइम में शिकार होते हैं जनरली सीनियर सिटीजन होते हैं, क्योंकि दे आर वेरी इजी ससेप्टेबल होते हैं, वो लोग इजिली बिलीव कर लेते हैं लोगों को कोई और रहता है ना, कोई भी रिटायर करता है अगर कुछ पैसा है इन्वेस्टमेंट में जनरली देखते हैं लोगों ने, तो वो जाते हैं चाहते हैं कि मेरा पैसा कैसे थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उस लालच में आके कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाते हैं, कैंपेन करते हैं, गांव गांव में जाके प्रचार प्रसार करते हैं कि इस तरह का नहीं कीजिए, हम लोग डिजिटली भी करते हैं, देन सोशल मीडिया में तो देते ही हैं, एडवर्टाइजमेंट भी में भी देते हैं लोगों को कि और लिफलेट भी देते हैं लोगों को। देखिए बैंक गवर्नमेंट की तरफ से साइबर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, तो इसमें बैंक के लिए हर वेडनेसडे होता है साइबर डे, तो ये हर एक बैंक इसको मानता है, उसमें जो जानकारी दी जाती है उसको नोट करें। और मेरा सब कस्टमर से सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी को भी OTP शेयर ना करें या कोई भी लिंक में क्लिक ना करें, कोई भी लुभावना कॉल आए जो भी अगर आपको बोलता है कि आप 10,000 दीजिए हम आपको 20 लाख दे देंगे या 20,000 दे देंगे, गलत बोलता है, कभी भी डबल इतना जल्दी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। सो ये हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए पर्टिकुलरली हर एक ब्रांच में हम मीटिंग करते हैं हर मंथ ये बैंक के तरफ से,
1: तो वरिष्ठ नागरिकों को और जो कम शिक्षित हैं उनको जागरूक किया जाता है कि आप अपने किसी भी तरह के लुभावने प्रलोभन में ना आए और अपने

0: पैसों को सुरक्षित
1: रखें, बैंक आपको पूरी सुरक्षा देगा। कार्यक्रम के अंत में सुबोध जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: यही बोलूंगा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, क्योंकि पैसा आप ही का है
1: जी,
2: तो सतर्क भी आपको ही रहना है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा, पहला चीज है आपका पासवर्ड, बैंकिंग रिलेटेड जो चीजें हैं सबसे महत्वपूर्ण है आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन या ओटीपी, ये चीजों का डिटेल्स कभी भी किसी को शेयर ना करें।
1: बिल्कुल,
2: अगर हो जाता है बाई चांस भी शेयर हो गया, अगर आपको मालूम पड़ गया कि आप शिकार हो गए, तो तुरंत बैंक में आप योगाजोग कीजिए, और जैसे मैंने बताया 1930 उस पर आप कॉल कीजिए। जो बोला जाता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो नहीं होना है। थोड़ा सा बी केयरफुल और इस तरह जो लुभावना कॉल से बचिए। और ये अभी आप अगर देखेंगे ना, डिजिटली वी आर प्रोग्रेसिंग, बहुत प्रोग्रेस हो गया है, बट हम लोग जितना भी सिक्योर करें बैंक को, जो क्राइम करते हैं वो लोग हमसे बहुत आगे जाके नई नई तरीका ला रहे हैं फ्रॉड करने का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, आपने सरल भाषा में महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्रोताओं, याद रखें, सुरक्षा ही समझदारी है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित बैंकिंग का लाभ उठाएं। साइबर सुरक्षा, सतर्क ग्राहक, सुरक्षित बैंक के विषय पर अभी अपने श्री सुबोध कुमार गोप, उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अल्पना श्रीवास्तव की बातचीत सुनी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
3: अभी आपने सुनी भेंटवार्ता, और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
4: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
5: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
6: लग जा गले के फिर हंसी रात।
4: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: विविध कार्यक्रम में बात करते हैं व्यक्ति विशेष सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, जिनका जन्म 10 नवंबर 1848 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राष्ट्र के शिक्षक, ये था इनका उपनाम जिससे सभी इन्हें पुकारा करते थे। वैचारिक मतभेद के कारण इन्होंने जिलाधीश का पद त्यागा और इसके बाद कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी के अध्यापक का कार्य संभाला। अपनी भाषा शैली के लिए सदैव ही जनप्रिय रहने वाली शख्सियत थी इनकी। राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए आपने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। आप एक अलग ही राष्ट्रवादी आंदोलन के कारक बने और अपनी एक अलग वैचारिक भाव रखकर अपनी पहचान बनाई। 6 अगस्त 1925 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस दुनिया से विदा हुए। उनके विचार और कथन हमेशा देशवासियों के लिए सम्माननीय रहेंगे। वंदे मातरम सुनते ही राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव जाग जाता है, और हो भी क्यों ना। बंकिमचंद चट्टोपाध्याय द्वारा 1857 में रचित ये गीत नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना का वो अमर महामंत्र है जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगठित और संगीतबद्ध किया गया, जिसके बाद ये भारत की संस्कृति और राजनीतिक पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जो कि एकता, त्याग और भक्ति की भावना को अभिव्यक्त करता है। वंदे मातरम सुनते ही सिर्फ एक शब्द नहीं वर

देश का अभिमान, देश की पहचान, भारत की आजादी से लेकर आज तक ये शब्द कभी ढाल बनकर, कभी गीत बनकर हमारे समक्ष, हमारे जीवन में उतर कर नई प्रेरणा देता है, नया जोश जगाता रहा है। तो आइए इस अमर राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ पर गर्व से शीश झुकाएं, उन भावनाओं को फिर से जीवित करें जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाने का स्वप्न दिखाया था। और अब सुनते हैं ये एक देशभक्ति गीत।

0: जी हाँ, मिलके चलेंगे बिल्कुल। लेकिन अभी हो गया है समय समाप्त हमारे आज के इस कार्यक्रम का। जल्दी ही मिलेंगे नई बातों नई गीतों के साथ आपके इसी कार्यक्रम विविधा में। तब तक के लिए कीजिए स्वीकार अपने दोस्त प्रीति का प्यार भरा नमस्कार।
1: विविधा।

0: Lebedha.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनने बारे हमारे सबरे भैया बहनन खो नीलम बहन की दो हाथ जोड़ के नमस्कार। किसान भैया बहन, देखो जैसे ही बरसात को मौसम शुरू होते है, जमीन के भीतर रहने वाले जीव जंतु ऊपर आन लगाते हैं और अपने उनके बिल में जब पानी भर जाते हैं उसके कारण जहरीले जीव जंतु पानी बाहर आ जाते हैं। जैसे कि देखो सांप है, बिच्छू है, ऐसे कीड़न से सुरक्षित रहने के लाने जो हमारे किसान भैया खेतन में काम करते हैं उन्हें काम करती बेरा सावधान रह चाहिए। और देखो इमें का करने उन्हें लंबे जूता पैर हैं जो ऊपर तक रहते हैं और दस्ताने पैर हैं पहने चाहिए। घर के आसपास सफाई रखें, काय से खेतन में जब हमारे किसान भैया काम कर रहे थे तो जीव जंतु नालियन के द्वारा हमारे जो किसान भैया हैं वो खेतन में काम तो कर रहे हैं इके संगे संगे जो जीव जंतु हैं वे नालियन के द्वारा घर तक भी आ जाते हैं। तो जब भी अंधेरे में जाएं टॉर्च को उपयोग करें, खेतन में काम करती बेरा पहला आसपास जांच लें फिर काम करें, और जब भी खेतन में जाएं लंबे जूता और मोटे कपड़ा पहने, और जब भी बाहर रखे जूता पहने तो उन्हें पहले अच्छी तरह से जांच लेवे कि कौनो कीड़ा पतीरा तो उनके अंदर नहीं है, और अपने मोड़ी मोड़न को भी देखो जब भी पहनाए तो देखभाल के ही पहनाए। और घर की नालियन में जाली लगा के रखें जिससे बाहरी कीट पतंगा है कीड़ा मकोड़ा है वे अंदर ना आ पाए, और इतने के बाद भी अगर कोनो भैया बहन का सर्प काट लेते हैं तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाके डॉक्टर भैया से संपर्क करें। तो ऐसे ही आज हम अपन के लाने लेके आए हैं जो भेंट वार्ता जी को विषय है सर्प दंश प्रकार लक्षण प्राथमिक उपचार एवं भ्रांतियां। डॉक्टर अनु सिंगल विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक विज्ञान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से राकेश जैन भैया जी ने बातचीत करी तो वे का कछु बता रही, लो सुनो उन्हीं की जुबानी।

0: श्रोताओं, इस समय आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम आएगा, और जब बरसात का मौसम आता है और बरसात होती है तो तमाम बेलों में पानी घुसता है, और उसकी वजह से तमाम जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू बाहर आ जाते हैं, और हमारे किसान भाइयों का काम भी उसी समय शुरू होता है, खेतों में बुआई करना या जो भी खेती किसानी के काम है। तो कभी कभी हमारे किसान भाइयों के साथ ऐसे जहरीले कीड़ों या जहरीले सांपों से पाला पड़ जाता है, कभी कभी उन्हें डस भी लेते हैं, सर्पदंश जिसे कहते हैं। तो हमारे किसान भाई, सर्पदंश के बारे में कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं, कौन से सांप जहरीले नहीं होते, तो उनके लक्षण क्या हैं, और प्राथमिक उपचार, और सबसे बड़ी बात है भ्रांतियां, क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र में सांप जब काटता है तो कहीं किसी बाबा के पास जाते हैं, कहीं झाड़ फूंक करते हैं, कहीं देसी दवाई इस्तेमाल करते हैं, और उसमें बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है और फिर लाइलाज हो जाता है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनु सिंगला जी को, जो कि विभागाध्यक्ष हैं फॉरेंसिक विज्ञान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि जो भारत में पाए जाने वाले सांप हैं, कौन से जहरीले होते हैं और कितने प्रतिशत अगर काट लें तो उनके जहर का कोई असर नहीं होता।
1: भारत में सांपों की एक समृद्ध विविधता पाई जाती है और ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये सांप नहीं होंगे अगर तो भी किसान भाइयों को नुकसान है। उनके खेतों में जो फसल खड़ी है उसको चूहे और जीव जानवर, कीट, ये सब खा जाएंगे। तो सांप क्या करते हैं, वो चूहे वगैरह इन सब का भोजन है, सांपों का भोजन है। अगर हमारे पारिस्थितिक तंत्र से सांप विलुप्त हो जाएंगे तो भी हमारे किसान भाइयों को नुकसान है। और अनुमान है कि भारत में जो है 11 से 16 फैमिलीज पाई जाती हैं, जिसमें कि 300 के आसपास सांपों की स्पीशीज पाई जाती हैं। ये हमारे इंडियन स्पीशीज की बात करते हैं।
0: 300 प्रकार के
1: सांप पाए जाते हैं, और ये चूहों की आबादी को नियंत्रित करने में इनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भारत में सांपों से काटे जाना ये एक बहुत बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मौतें हो जाती हैं। और इतने सब सुविधाओं के बावजूद गांव देहात में लोग डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, वो अपना इलाज अलग तरीके से झाड़ फूंक और ये सब चीजों में भी घिरे रहते हैं, और अस्पतालों तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और फिर उसमें भी अगर उनको सही समय पर इलाज नहीं मिलता है तो इस तरीके के फिर ये संख्या बढ़ती रहती है।
0: डॉक्टर साहब, कितने प्रतिशत सांपों के काटने से जहर का प्रभाव शरीर में?
1: देखिए, जो शोध के अनुसार सिर्फ 15% सांप ही जहरीली प्रजाति के पाए जाते हैं। शेष जो 85% सांप की जो प्रजातियां हैं वो विषहीन है प्रजातियां। तो उनके काटने से कोई मौत नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि
0: डर के मारे
1: बीपी फ्लक्चुएट कर जाता है, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से डेथ रेट बढ़ जाता है।
0: मतलब जहर का प्रभाव नहीं होता है।
1: जो जहर है सांप का, वो अगर आप उसको खा लें तो डेथ नहीं होती है। सांप का जहर जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। वो बॉडी में एब्जॉर्ब होके मतलब थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है, लेकिन उससे डेथ नहीं होगी। सांप के जहर को फैलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको चाहिए ब्लड, रक्त। जब वो रक्त में मिलेगा, जब वो रक्त बहेगा शरीर में, तब जाकर के वो अपना असर दिखाएगा।
0: जो किसान भाई हैं वो समझ गए होंगे कि लगभग 100 में से 85 प्रकार के जो सांप हैं उनके जहर का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब जो आपने 15% सांपों की बात की है जो जहरीले होते हैं, उन्हें हमारे किसान भाई कैसे पहचाने कि ये जहरीले हैं?
1: देखिए, जो 15% जो सांप हैं ये 4 मेन तरह के पाए जाते हैं। सबसे जो उसमें है रसेल वाइपर, जिसको आप बोलते हैं। रसेल वाइपर आम भाषा में इसको कोरी वाला, घान, चीतर भी आप इसको बोलते हैं। ये थोड़ा दिखने में मोटा होता है, चकतेदार होता है, और जब ये चलता है तो इसकी जो आवाज होती है ना प्रेशर कुकर की सीटी की जैसी, इसकी आवाज आती है। और जनरली ये क्या है कि ये ऊंची घास, गन्ने के या कपास के खेतों में मतलब छुपा रहता है। जब ये काटता है तो एक गहरा घाव होता है, और गहरे घाव से मतलब रक्त स्त्राव होता है, खून निकलता है। इसकी एक और खासियत है रक्त स्त्राव की, ये जरूरी नहीं है कि जहां पर ये सांप ने काटा है वहीं से

0: हाँ
1: ये किसी और शरीर के स्थान से भी, जैसे कि नाक,
0: हाँ
1: मुंह से, कान से भी खून निकल
0: अच्छा,
1: सकता है।
0: सांप ने काटा कहीं और है और हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से खून निकल सकता है,
1: नाक से, मुंह से,
0: अच्छा,
1: कान से, गुदा द्वार से,
0: ठीक,
1: तो इस तरीके से ये डिटेक्ट करता है। फिर दूसरे जो सबसे जो पाया जाता है वो है किंग कोबरा, जिसको आप किंग कोबरा कहते हैं, नाग हिंदी में आप बोलते हैं नाग, नाग का काटा है ना। इसकी पहचान है इसके फन पे यू या फिर वी जैसा सा
0: साइन
1: बना रहता है, ठीक है, फन के ऊपर। और जनरली ये जो है गाय, भैंस का तबेला, झाड़ी, लकड़ी का ढेर, इस तरह की, मतलब जहां पे लकड़ियों के ढेर वगैरह पड़े रहते हैं ना, तो वहां पर ये अपनी जगह बनाता है, अपना घर बनाता है। और इसके काटने से क्या होता है कि तुरंत बाद बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है और उसके बाद स्किन में सूजन आ जाती है, त्वचा वहां से जो है काली पड़ जाएगी, बिल्कुल एकदम काली पड़ जाती है, और आंखों में धुंधलापन आ जाता है, बोलने में, सांस लेने में कठिनाई होती है, कई बार क्या होता है लकवा के भी सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सांप का जहर है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन वो नर्व के ऊपर, मतलब नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लकवे के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है सांपों की वो है भारतीय क्रैत, जिसको आप बोलते हैं ब्लू क्रैत या कॉमन क्रैत भी इसको, मतलब गांव देहात में इसे बोला जाता है, ब्लू क्रैत ही बोलते हैं इसको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बरसात के सीजन में पाया जाता है, ये जो जैसे छोटे छोटे खाई खड्डे हो जाते हैं ये उनमें जाके बैठ जाता है, छोटे छोटे खाई खड्डों में निकल के बैठ जाता है और छुप जाता है, बिलों में छुपता है। और ये क्या, कोई छोटा सा होल भी होगा तो उसमें से निकल के चला जाता है। ये बाथरूम्स में छोटे पाइप होते हैं, दरवाजों में से पाइप, छोटे छोटे पाइपों में से निकल के बाथरूम में जाकर के कुन्नों में छुप जाता है, तो ये जनरली छोटे छिद्रों से प्रवेश करता है। और इसके काटने से क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज दर्द उठता है पेट में,
0: अच्छा,
1: और उल्टी, कमजोरी जैसे, मतलब सिम्टम्स दिखाई देते हैं पीड़ित में, और इसके में भी दिखने में धुंधलापन आता है, बोलने में, सांस लेने में कठिनाई होती है, और इसमें भी लकवे के
0: लक्षण
1: आ जाते हैं। फिर एक जो चौथी इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो है सॉ स्केल्ड वाइपर, ये वाइपर इसको हम बोलते हैं, ये के लकड़ी के या घास के ढेर फूस में जाकर के छुपता है, और जैसे अपन घास के ऊपर चलते हैं ना तो तब ये काटता है,
0: अच्छा, अच्छा,
1: जो घास के आवाज सरसराहट ये उसमें उसकी आवाज मिक्स हो जाती है, ठीक है, और इसमें ना चुभने का एहसास होता है जब ये काटता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुई पिन चुभने का जैसे एहसास होता है, इस तरह का एहसास होता है। और इसमें जो काटने का जो होता है वहां पे बहुत गहरा घाव हो सकता है, घाव, बड़ा घाव मिलता है, और इसमें भी रक्तस्राव जो है शरीर के किसी भी हिस्से से होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले वाला बताया था वो रसेल वाइपर था, ये सॉ स्केल्ड वाइपर है,
0: दोनों घाव करते हैं,
1: दोनों घाव करते हैं, और शरीर के किसी दूसरे हिस्से से भी, नाक, मुंह, कान से भी
0: ब्लड
1: आ सकता है। तो ये एक, मतलब कॉमन वेराइटीज है, वेराइटीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में ये वेराइटीज ज्यादातर पाई जाती है।
0: डॉक्टर साहब, मान लो कि किसी किसान भाई को, किसी भी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, तो हमारे किसान भाई क्या प्राथमिक उपचार करें?
1: प्राथमिक उपचार में सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला स्टेप है कि अगर वो सांप भी वहीं पर है, व्यक्ति को काट लिया है, तो उसको उससे दूर करना है,
0: ठीक है,
1: और क्योंकि उस पीड़ित व्यक्ति को बहुत घबराहट हो रही होगी, तो उसको समझाना है कि उसको घबराहट नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है, मुमन जहरीले सांप नहीं होता, लेकिन घबराहट की वजह से व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो घट बढ़ सकता है, और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमें उसका मोरल थोड़ा बनाए रखना है, बूस्ट अप करना है, उसको घबराहट से दूर रखना है। फिर उस व्यक्ति को सोने नहीं देना है,
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, वो सोए नहीं, ठीक है, पर उसको कोई शारीरिक क्रिया भी नहीं करने देना, हिलडुल बिल्कुल खत्म करनी है,
0: जागृत अवस्था,
1: जागृत अवस्था में रखना है, और उसको समझाना है कि आपको हिलना डुलना नहीं है, और तुरंत ही एम्बुलेंस को भी कॉल करना है। और कई बार मैं आपको बता दूं कि जनरली लोग तुरंत उसको काटना, काट के खून निकालना शुरू कर देते हैं, घाव को काटना लग जाएंगे, या उसके ऊपर उसको बहुत रगड़ देंगे कि वहां पर उसका जहर वहीं से निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि इससे एक गैंग्रीन वाली समस्या हो सकती है। गैंग्रीन उसमें जब ये घाव हो जाता है और ब्लड का आप प्रवाह किसी तरीके से रोक दोगे तो वहां पे गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा और उससे भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो उससे विकलांगता की ओर बढ़ जाता है पीड़ित।

0: ठीक है, और उसके कपड़े थोड़े से ढीले कर देने चाहिए।
1: ठीक है।
0: अगर किसी तरीके की घड़ी, चेन, अंगूठी,
1: हाँ,
0: बिछिए, ये
1: हाँ,
0: सब पहने
1: हाँ,
0: रहते हैं,
1: हाँ,
0: तो ये सब निकाल देने चाहिए। शरीर को ढीला छोड़ देना, और किसी भी तरह की चीजें जो है, ये सब ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ये सब निकाल देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि उसमें सूजन आ जाती
1: हाँ,
0: है,
1: बिल्कुल,
0: घाव के आसपास सब सूजन आ जाएगी, तो बाद में ये सब चीजें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए ये सब निकाल देना चाहिए। और घाव से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ उसको एक साबुन और साफ पानी से साफ करना है, धोना
1: अच्छा,
0: है। और मरीज को जो है एम्बुलेंस में और किसी स्ट्रेचर से ही उठा करके लेके जाना, उसको चला फिरा करके नहीं लेके जाना। होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के लिम्फ नोड्स होते हैं वो क्रियाशील होते हैं,
1: ठीक,
0: उसकी वजह से फिर जहर तेजी में शरीर से में फैल जाएगा।
1: जी
0: लिम्फ
1: जी
0: नोड जो हमारे में चलने फिरने में
1: हाँ,
0: सहायक
1: बिल्कुल
0: जो
1: बिल्कुल
0: नोड्स होते हैं, तो अगर वो मूवमेंट में आएंगी तो उससे ब्लड बहुत जल्दी
1: बिल्कुल
0: सर्कुलेट होगा, और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया
1: जी
0: था, इसको ब्लड की जरूरत होती है जहर को
1: बिल्कुल
0: फैलने के
1: जी
0: लिए, तो जो उसकी मूवमेंट है,
1: हाँ,
0: हमें वो मूवमेंट को
1: रोकना पड़ेगा,
0: रोकना पड़ेगा।
1: ठीक
0: और फिर उसको पीड़ित व्यक्ति को नजदीक के ही किसी चिकित्सालय में ले जाना होगा,
1: जी
0: जहां पर उसको एंटी स्नेक वीनम के जो उसके उसको डोज दी जाएगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ऑब्वियसली उसके कुछ टेस्ट करेंगे। अगर आपने सांप को देखा है
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपको थोड़ा, अगर आप ध्यान रखें
1: ये का
0: किस
1: सांप
0: वैरायटी
1: का
0: का सांप है, तो इलाज में और जल्दी कर सकते हैं हम,
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर जो है
1: इलाज
0: उसके
1: में
0: हिसाब
1: सहूलियत
0: से
1: हो जाती है,
0: सहूलियत हो जाती है। और फिर जो प्राथमिक उपचार के दौरान एक चीज जो हमें नहीं करनी
1: जी
0: है, हम पिक्चरों में देखते हैं
1: जी
0: कि वो सांप के जहर को चूस के बाहर निकाल
1: हाँ
0: देते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ बिल्कुल
0: ये तो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल नहीं करना है,
1: जी जी
0: ये एक तरह का मतलब सुसाइड हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जो जो इंसान दूसरा
1: चूसेगा
0: चूसेगा
1: वो भी,
0: उसके लिए
1: उसको
0: भी,
1: भी नुकसान हो
0: हाँ,
1: सकता
0: उसको
1: है
0: भी नुकसान हो
1: जी,
0: सकता है। और अपने मन से किसी भी तरह की कोई दवाई उसको, मरीज को
1: नहीं
0: कोई
1: देनी,
0: उसका दर्द कम करने के लिए
1: हाँ
0: या इस तरह की दवाई नहीं देनी है उसको। और कई बार हम क्या करते हैं कि कोई जड़ी बूटी या
1: हाँ
0: मलहम लगाते
1: हाँ
0: हैं, तो वहां पर वो भी नहीं लगाना है, दर्द बहुत हो रहा होता
1: जी
0: है इसमें, कई सांपों के काटने से दर्द बहुत होता है,
1: जी
0: तो उसमें बर्फ लगा करके उसको सेक देने की कोशिश करते हैं या
1: जी
0: मलहम लगाते हैं,
1: जी
0: ये सब नहीं करना है।
1: जी
0: और देखिए किसी भी तरीके के तांत्रिक झाड़ फूक वाले बाबा के
1: हाँ,
0: चक्कर में
1: मैं
0: बिल्कुल
1: इसी
0: नहीं आना
1: बात पे
0: है।
1: आ रहा था कि बुंदेलखंड का क्षेत्र
0: जी
1: है
0: जी
1: और यहाँ पे हम लोग अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं
0: जी
1: कि झाड़ फूक के चक्कर में देरी हो गई अस्पताल जाने में और फिर
0: और
1: अनहोनी हो जाती है,
0: बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ
0: देखिए कि साइंस की सदी है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: हाँ
0: और झाड़ फूक से इन सब से कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो सर्पदंश के जो काटने से जो मृत्यु दर जो बढ़ रही है,
1: हाँ
0: ये आप देखेंगे अगर हम इसमें रिसर्च और गहरी करें, तो हम पाएंगे ये वही लोग हैं जिनको इलाज मिलने में देरी हुई।
1: देरी हो गई बिल्कुल
0: अगर सही समय पर अगर व्यक्ति जो है आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे के भीतर वो पहुंच जाए
1: डॉक्टर के
0: डॉक्टर
1: पास,
0: के पास, और प्राथमिक उपचार उसको इस तरीके का मिले कि उसको घबराहट उसकी कम की जाए
1: बिल्कुल
0: और उसका प्राथमिक उपचार सही तरीके से उसको मिले, तो हम उसको बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब कभी कभी क्या करते हैं, जिसको भी वो सांप काटता है उस हिस्से को बहुत टाइट बांध देते
0: जी
1: हैं, तो ये कहां तक सही है?
0: देखिए इसमें ना मैं आपको बताऊं कि जो इसको बोलते हैं टूर्निकेट,
1: हाँ
0: टूर्निकेट करना, तो अंग के चारों ओर टाइट बैंड जो बांध देते हैं
1: हाँ
0: उसको बांधना होता है, लेकिन बहुत टाइट नहीं बांधना
1: अच्छा
0: होता।
1: अच्छा अच्छा
0: अगर हम उसको टाइट बांध देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो स्किन जो है वो निष्क्रिय हो जाती है और यहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है,
1: अच्छा
0: तो इससे उस टाइट बांधने से क्या होता है, विकलांगता आ जाती है,
1: बिल्कुल आ सकते, उस
0: सिम्टम्स
1: हिस्से
0: आ
1: को
0: जाते
1: काटना
0: हैं,
1: भी पड़ सकता है,
0: वही गैंग्रीन वही है,
1: हाँ हाँ
0: गैंग्रीन हो गया तो सर फिर
1: हाँ
0: आपको काटना ही
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा उस
1: बिल्कुल
0: हिस्से को।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम लोग घरों में एक फर्स्ट एड किट रखते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो क्या सांप के लिए भी कोई ऐसी सर्पदंश किट
0: हाँ जी,
1: आपके?
0: देखिए ये एक सर्पदंश किट ही इसको बोलते हैं, और ये एक प्राथमिक चिकित्सा में ही काम आने वाली किट है।
1: अच्छा
0: इसको हम अपने किसान भाइयों को गांव देहात में खेती बाड़ी में ये रख सकते हैं, वहां के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं
1: हाँ
0: तो ये सब अवेलेबल रहती
1: बिल्कुल
0: हैं। और इसमें क्या है, सांप और सांप के ही नहीं, जहरीले कीड़े
1: हाँ
0: इनके भी काटने के मतलब जो है तीर
1: हाँ
0: और जो घाव हो जाते हैं,
1: हाँ
0: इन इन सब चीजों के लिए भी उसमें किट में सब सुविधाएं
1: अच्छा,
0: उसमें
1: जो
0: रहती है,
1: हमारे
0: प्राथमिक
1: किसान
0: चिकित्सा के
1: हाँ
0: लिए।
1: जो हमारे किसान भाई जैसे कृषि यंत्र प्रयोग करते हैं,
0: हाँ
1: उससे कोई घाव हो
0: हाँ
1: गया या बिच्छू ने काट लिया या
0: हाँ
1: जहरीले कीड़े काट
0: हाँ
1: लिया, तो
0: हाँ
1: उसमें ये काम आती
0: हाँ
1: है। डॉक्टर अनु सिंगला जी, चलते चलते हमारे जो श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहें?
0: देखिए मेरा आपसे संदेश कहूं, विनम्र निवेदन कहूं, स्नेक्स जो हैं जब तक हम उनको कुछ नहीं कहेंगे वो भी हमें कुछ नहीं कहते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: अगर

0: जितने भी जीव होते हैं अपने आसपास, अगर हम उनको नहीं छेड़ते
1: वो
0: तो वो हमें भी कुछ नहीं करेंगे,
1: वो भी हमें कुछ नहीं करेंगे। और सांपों का हमारे इकोसिस्टम में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर गलती से कहीं पर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि किसी को सांप ने काट लिया है, तो हमें उसको पकड़ना या उसको मारना नहीं है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको छोड़ दें। कहते कि सांप बदला लेता है, सांप कोई बदला नहीं लेता है, ये पिक्चरों में होता है। सांपों में बदला लेने का दिमाग नहीं है कि वो आपसे बदला ले, लेकिन हमें सही समय पर बिना किसी झाड़ फूंक और इन सब चीजों में पड़े हुए उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को समय से अगर हम किसी सामुदायिक पास के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दें, यहाँ पर एंटी स्नेक विनम का उनको उपचार मिल जाए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और उनकी जान बच सकती है। बस तुरंत किसी पास के इमरजेंसी में या डॉक्टर्स के पास आप जो लेकर के जाएं। इस दिशा में सरकार भी बहुत काम कर रही है, सरकार समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाती है, डॉक्टर्स के प्रशिक्षण होते हैं, जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके प्रशिक्षण चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो लोग स्किल्ड हैं अस्पतालों में और इस तरह की दवाइयां भी मौजूद हैं, तो उनका ही हमें उपयोग करना है, किसी भ्रांति में नहीं पड़ना।
0: डॉक्टर अनु सिंगला जी, विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक विज्ञान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने सर्पदंश प्रकार, लक्षण, प्राथमिक उपचार और भ्रांतियां, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी और सटीक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया बहनों, अब अपन ने जो भेंटवार्ता सुनी सर्पदंश प्रकार, लक्षण, प्राथमिक उपचार एवं भ्रांतियां पे डॉक्टर अनु सिंगल से बतकाव कर रहे थे राकेश भैया जू, और हम आशा कर रहे थे कि हमारे जो भी भैया बहन सुन रहे हो, वे भी देखो ये बात को जरूर मान रहे हैं कि कोनो भी भैया बहन को सांप या जहरीलो कीड़ा काटे तो घबराए नहीं, प्राथमिक अंग को जितना हो सके स्थिर रखें और पीड़ित को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल ले जाएं, और कोनो भी प्रकार के झाड़ फूंक, चीरा या जहर चूसवो, ऐसी कोनो भी गलती ना करें और अपनो विशेष ध्यान रखें। और भैया बहन देखो, अगर हम अपन से बतकाव करें, भैया बहन देख रहे अपन के धान की फसल में यूरिया मुख्य रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति के लाने करो जाते हैं। नाइट्रोजन पौधन को बढ़ा के और हरी पत्तियन को विकास के लाने बहुत जरूरी पोषक तत्व है। यूरिया पौधन को बढ़ा के तेज करत है, पत्ती हरी और स्वस्थ रहती हैं, बालियां अच्छी बनती और दोवन की संख्या, पौधन की जो है संख्या बढ़ाते है, उपज में वृद्धि होता है। यूरिया को उपयोग जो है अनुशंसित मात्रा में ही करें, खेत में पर्याप्त नमी हो या हल्को पानी हो तभी यूरिया डालें। यूरिया की मात्रा सही मात्रा में रखें, ज्यादा यूरिया देवे से पौधा गिर सकता है, कीट या रोग को प्रकोप बढ़ सका थे, उत्पादन में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सका थे। तो भैया बहन जो भी धान की खेती कर रहे हैं वो ये बात को ध्यान जरूर रखें। और देखो आप किसान भैया, अपन को एक और बात बता दें, फार्मर आईडी प्रमुख लाभ, यानी कि फार्मर आईडी के कितने लाभ है किसान भैया। फार्मर आईडी किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है जिसे सरकारी कृषि सेवा और योजनाओं को लाभ किसान भैया प्राप्त कर सका थे, और इसे किसान भैया की डिजिटल पहचान सुनिश्चित होते है, सरकारी कृषि योजनाओं को लाभ लेने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनत है, पात्र किसान तक सब्सिडी और अन्य सहायता समय पर पहुंचावे में सुविधा मिलत है, किसान भैया से संबंधित भूमि और कृषि विवरण को सुव्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार होते है, क्या प्रकार की सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाने बेर बेर जो है दस्तावेज देवे की आवश्यकता कम हो जाता है, कृषि संबंधित योजनाओं और लाभों को अच्छो समन्वय संभव होता है। तो सभी किसान भैया समय पे अपना फार्मर आईडी बनवावे जिसे आवश्यक सरकारी योजनाओं को लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। तो किसान भैया देखो, बातें तो हम अपने किसान भैया से खूब ही कर रहे हैं, तो कायना करवा देवे उनको मनोरंजन, और देखा ही रहे अपन, देखो खूब ही घनघोर घटा छाई है और पानी भी बरस वे के आसार है और बरस भी रहो है, तो कायना सुनो नारायण दास कुशवाहा और उनके संगी साथियों को गाओ जो लोकगीत।

हाँ किसान भैया, अभी अपन ने जो लोकगीत सुनो इके गावे वाले कलाकार हते नारायण दास कुशवाहा वा संगी साथी, और हम आशा करते हैं कि हमारे सबरे किसान भैया को खूब ही नौनो लगो हुई है। और आप बात करते हैं आज के मंडी भाव की, तो आज को गेहूं को मंडी भाव रहो न्यूनतम 2,350 से अधिकतम 2,460 रुपया प्रति कुंटल। ज्वार को आज को भाव रहो 1,700 से अधिकतम 1,720 रुपया प्रति कुंटल। और चना को न्यूनतम आज को भाव रहो 5,000 रुपया प्रति कुंटल। आलू को आज को दाम रहो न्यूनतम 1,000 से 1,250 रुपया प्रति कुंटल। टमाटर को न्यूनतम भाव रहो 1,500 और अधिकतम 2,560 रुपया प्रति कुंटल। हरी मिर्च को आज को दाम रहो 2,000 रुपया प्रति कुंटल। और सेब को आज को न्यूनतम दाम है 5,820 से अधिकतम 6,150 रुपया प्रति कुंटल। अनार को न्यूनतम दाम रहो 4,820 से लेके 5,000 रुपया प्रति कुंटल। और पपीता को आज को न्यूनतम है दाम 2,120 से अधिकतम 2,250 रुपया प्रति कुंटल। और देखो भैया बहन, मौसम में आज काले बादल के संगे तेज और धीमी बरसात देखने को मिली, और आज के मौसम में ठंडी हवा और मौसम सुहावनो रहे। और ये के संगे देखो अब बारी है आज की सीख की, तो किसान भैया अपन खेत

किसानी को काम करत और खेती किसानी के काम में सर्दी, किसान भैया जो है सर्दी देखत, ना गर्मी ना बरसात, तो काम तो किसान भैया इनको लगो ही रहते। ई समय बरसात को देखो मौसम चल रहा, तो हमारे किसान भैया खेतन में कछु सावधानी जरूर बरते हैं। बरसात के मौसम में खेत में बिजली के खंभा और तारन से कम 10 से 15 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। गीली जमीन और पानी बिजली अच्छे संवाहन होते हैं, जिससे करंट लगने को खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो जब भी खेतन पे टूटे या नीचे झूले बिजली के तार के निकट बिल्कुल ना जाएं। सीमेंट या लोहे के बिजली के खंभा को गीले हाथन से शरीर ना छुएं, कैसे इनमें करंट आ सकत है। खेतन पे काम करत समय लोहे के पाइप या लंबे औजार तारन के संपर्क में ना आए, इको पूरा ध्यान रखें। जानवरन को बिजली के संपर्क में आवे तो संपर्क में वाले खंभा से ना बांधे। यदि कोनो खंभा में तार या करंट उतर आओ है तो तुरंत बिजली विभाग को सूचना दे। कोनो भी व्यक्ति या पशु को करंट लगवे पे सूखी लकड़ी या प्लास्टिक की मदद से उसे दूर हटाएं, सीधे हाथ से ना छुएं। तो भैया बहन देखो, बरसात का मौसम चल रहा हो, किसान भैया खेती किसानी को काम करत है, तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान जरूर रखें और अपन सुरक्षित रहें, अपने ढोर बछेरियों को भी सुरक्षित रखें। और किसान भैया एक ही संगे आज के कार्यक्रम को टाइम सोई पूरा हो रहा हो, सो उठाओ कागज कलम और लिखो कार्यक्रम को पतो। कार्यक्रम चौपाल द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड नंबर है 2 8 4 1 2 8। तो एक ही संगे अपनी नीलम बहन को दिवाज्ञा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल एफएम 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। समय है आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का।

अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किसान वाणी कार्यक्रम सुन सकेंगे।

7:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। 7:31 का समय होगा कार्यक्रम खुशबू माटी की, जिसे आप हमारे केंद्र से सुन सकेंगे।

रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम होगा। 8:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम और 8:30 पर कस्टमाइज्ड प्रायोजित कार्यक्रम सुन सकेंगे

8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या और 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

9:30 पर आप आकाशवाणी के झांसी केंद्र से सुनेंगे फोनिंग कार्यक्रम हेलो झांसी। 10 बजे का समय होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम का। 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में योगेश की शब्द रचना, जिसकी धुन बनाई राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम बातों बातों में।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई,
1: चांद की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
0: ओह ओह ओह।

हम हैं राही प्यार के, सुनते हैं इस फिल्म का गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम हमजोली।

0: इस गीत के साथ ही नए पुराने गीत सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। कुछ ही देर में सुनिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी। यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।
1: इस कार्यक्रम के सरकार

0: जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ रेनू बहनी।
1: भैया कहा जाता है कि जल ही जीवन है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बहुत से जने ये बात का समझत नहीं है और अथाह पानी जोन है बहावा करत है।
0: लेकिन बहनी हम पंचन का चाहिए कि हम पानी के इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करी और यही बदे आपन जोन सरकार है वो योजना चलाए रही है प्रति बूंद अधिक फसल।
1: बिल्कुल भैया, काहे कि यहाँ पानी जोन है चाहे मानव हो और चाहे खेती पाती हो, दोनों के लिए वतने जरूरी है। यही बदे जोन है हम पंचे पानी की एक एक बूंद का यहाँ इस्तेमाल करी और योजना के भरपूर लाभ उठाई।
0: बिल्कुल ठीक कहती हो बहनी। मूल एकरे साथे साथे अपने आस पास जोन चीजें हो रही है हम पंचन का वह केर जानकारी हो चाहिए।
1: तो भैया काहे न सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: CISH लालिमा अमरूद की एक उन्नत एवं अत्यंत संभावनाशील किस्म है जिसे ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा एप्पल अमरूद के रूप में चयनित किया गया है। इस किस्म के फल गोल मध्यम आकार के तथा आकर्षक गहरे लाल रंग के होते हैं। फलों का छिलका 1.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटा होता है जिससे फल परिवहन एवं भंडारण के दौरान अधिक सुरक्षित रहते हैं। इसका गूदा सख्त होता है तथा मिठास और हल्की अम्लता का उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करता है जिससे इसका स्वाद बेहद आकर्षक बन जाता है। इस किस्म में विटामिन सी 150 से 220 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है जो इसे पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बनाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता, आकर्षक रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण ये किस्म ताजे फल के रूप में उपयोग के साथ साथ जूस, जेली, जैम एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। इस किस्म का विकास डॉक्टर शैलेंद्र राजन एवं डॉक्टर रामकुमार द्वारा किया गया है जबकि डॉक्टर अंशुमान सिंह इसके अनुरक्षक वैज्ञानिक हैं। इसका विकास वर्ष 2015 में किया गया तथा वर्ष 2024 में इसे आधिकारिक रूप से जारी किया गया।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: भैया देखो, अगर कोनो काम समय पर होत है ना तो हमका मुनाफा जोन है ज्यादा होते है, लेकिन उके खातिर हमका उस समय की जानकारी होनी चाहिए कि उस समय पर कौन काम हमका ज्यादा फायदा दे। तो आज की बात में यहाँ हम ऐसे एक भेंटवार्ता लेके आए हैं, आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य।

0: पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्यारे लाल सरोज भैया और इनसे बतकही किहीन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आम की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं वहां इस समय सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से विभागाध्यक्ष फसल उत्पादन प्रभाग डॉक्टर पीएल सरोज साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आम में फलत टूट चुकी है, ऐसे में आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन।
2: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आम फलों का राजा है जो अपने स्वाद, मिठास, पौष्टिक एवं औषधीय गुणों के कारण जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारत में आज लगभग 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम की खेती हो रही है, जिससे करीब 2.5 से 3 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है।
1: यानी 2.5 से लेकर के 3 करोड़ टन।
2: जी, आम न केवल राज्य कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है अपितु लाखों बागवान भाइयों, प्रसंस्करण उद्योगों, निर्यातकों आदि की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश बाग पारंपरिक पद्धति से स्थापित किए गए हैं, जिनकी आयु 30 से 50 वर्ष की हो चुकी है, पौधों की ऊंचाई काफी बढ़ गई है, डालियां आपस में मिल गई हैं, सघनता के कारण प्रकाश एवं आयु का उचित संचरण नहीं हो रहा है।
1: अगस्त का महीना चल रहा है, ऐसे में आम के बागों में कौन कौन से प्रमुख कार्य करें बागवान भाई बहन।
2: सामान्यतः अब इस समय सभी किसान भाई फलों की तुड़ाई लगभग समाप्त कर लिए हैं। अगस्त के महीने में बागों का जो प्रमुख कार्य होता है वह खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग का होता है।
1: जी,
2: यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि बाग में पानी भरा हुआ है तो खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग न करें। पहले बाग से पानी निकालकर जब खेत जुताई के उपयुक्त हो जाए तो अच्छी तरह से जुताई करके खेत को पहले खरपतवार रहित कर लें। पूर्ण विकसित बाग के लिए सामान्य तौर पर 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नत्रजन, आधा किलोग्राम फास्फोरस एवं 1 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है
1: प्रति पेड़।
2: अब अगस्त के महीने में जब हमको खाद देना है तो यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नत्रजन की आधी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा को देना है।
1: अच्छा, तत्व के रूप में।
2: या इसे यूं समझें, अगर हमको लगभग 500 ग्राम नत्रजन देना है तो उसके लिए लगभग 1 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम अगर हमको पोटास देना है तो उसके लिए 800 ग्राम करीब म्यूरेट ऑफ पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा लगभग 500 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम डीएपी को हम दे सकते हैं। 1.5 से करीब 2 मीटर की दूरी पर करीब 1 फीट चौड़ी नाली बनाएं जो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी हो।
1: यानी गोलाई में
2: नाली को बनाना है और उसी नाली में अच्छी तरह से नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और साथ में जो देसी खाद है सबको मिला लें।
1: गोबर की सड़ी खाद।
2: फिर नाली को बंद कर दें। यदि नमी की कमी है या वर्षा नहीं होती है ऐसी परिस्थिति में हल्की सिंचाई कर सकते हैं जिससे पोषक तत्व जड़ों तक पहुंच जाए जो स्वस्थ बाग के लिए आवश्यक है एवं वृक्ष की वृद्धि, पुष्पन, फलन एवं फल गुणवत्ता में आवश्यक सुधार हुए बहुत ही उपयोगी होता है। कभी कभी किसान भाई कुछ खेतों में, कुछ बागों में हरी खाद जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया आदि बोए हैं, यदि अगर उसको बुआई किए हैं तो वह पलटाई का समय आ गया है, मतलब उसकी जुताई करके
1: हरी खाद मिलाने का
2: भी ये समय अगस्त का महीना होता है।
1: तक सब जैसे दाल में नमक की जरूरत है उसी तरह फलदार वृक्षों को मुख्य और गौण पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होगी।
2: जी, जैसे हमारे मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं, उसी तरह फलदार वृक्षों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अच्छी फलत के लिए, उसके टिकाव के लिए सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से आम उत्पादन वाले क्षेत्रों में अधिकांश मृदाएं क्षारीय प्रकृति की हैं, अर्थात उनका पीएच मान 7.5 से ज्यादा है एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी सामान्यतः कम है। ऐसी परिस्थिति में जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों की पूर्ति के लिए उनका परणीय छिड़काव करना चाहिए। अलग अलग इन तत्वों का प्रयोग करने के लिए बागवान भाइयों को काफी कठिनाई होती है, अतः इसके लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्वों का

0: एक मिश्रण तैयार संस्थान द्वारा तैयार किया गया है जिसे हम फसल प्रभात के नाम से जानते हैं। इसमें जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम होता है,
1: यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह है।
0: और इसको देने के लिए करीब 4 से 5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर परणीय छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे कि उसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए, यानी जब मौसम खुला हो तब इसका छिड़काव करें तो इसका लाभ ज्यादा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, अगस्त में रोग बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कुछ करना है?
0: अवश्य करना चाहिए। आम के फलों को तोड़ने के बाद पौधों की जो सूखी, रोग ग्रसित एवं सघन शाखाएं हैं उनकी काट छांट करना बहुत आवश्यक होता है। रोग बीमारियों के रोकथाम के लिए 250 ग्राम लगभग 1 पाव ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके प्रतिवृक्ष यदि देते हैं तो इससे पौधा स्वस्थ रहता है, बीमारियां लगने की संभावना कम होती है।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ किसान भाइयों को बागवानी से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण देता है और आमतौर पर यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है, इसलिए बागवान भाई संपर्क कर सकते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा को मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें जो उनको वार्ता करने में आसानी रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 94-83-50-96-53, 94-83-50-96-53, 94-83-50-96-53, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का आम के फलदार वृक्षों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: सामयिक कृषि कार्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने समय पर जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसको नहीं किया तो आप अगले वर्ष अच्छा उत्पादन नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय पर खाद दें, समय पर निराई गुड़ाई करें और उसमें जो सूक्ष्म तत्वों का विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो देखे होंगे आप, जैसे वर्षा समाप्त होगी फल वृक्षों से गोंद निकलने लगता है, अतः उसके लिए भी आप अगर कॉपर सल्फेट का घोल बना करके पौधे के मुख्य तने पर लगा देंगे तो ज्यादा फायदा होगा।
1: डॉक्टर पीएल सरोज साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेनु बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो, जानकारी के बाद तो बहुत हो गए, अब कुछ गीत गवने की बात हो जाए।
3: बिल्कुल भैया, हो जाए तो और सुन लीन जाए एक खिमटा सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर में। यहाँ
2: जहमा वो कह रहे हैं सुलहो सिंगार कहिए।

0: रेनू बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में कितना मेहनत करी थे, मूल कऊ दाए ऐस हो जाते है कि हम उतना फायदा ना पाए थे। मूल बहुत से ऐसे पंच हैं जे वह फायदा का बनाए लिए थे और उनके बात करी थे हम पंच आज के किसान में।
1: तो भैया देखो आज ऐसे ने एक किसान अपनी बैठकी में आए हैं और वे बता रहे हैं डेयरी व्यवसाय के बारे में। यहाँ इनके नाम है ओम बाबू वर्मा भैया और देखो इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के गोसाईगंज ब्लॉक के केवली गांव के डेयरी व्यवसायी ओम बाबू वर्मा भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप मट्ठा मैन के रूप में जाने जाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती खास करके डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ कब से?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी पढ़ाई लिखाई तो शुरू में मेरे छठीवी से गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज में हुई, उसके बाद फिर लखनऊ में सुंदरबाग में बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज किए, उसी जगह से हमने फिर आईटीआई अलीगंज से पढ़ाई की, उसके बाद फिर अपना गोपालन और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल लाइन का काम हमने वहां से शुरुआत की।
2: तो गोपालन शुरू कब किया आपने?
3: मेरे बच्चे जो है बहुत बीमार रहते थे, तो मेरे बड़े वाले भैया एक दिन मेरे घर पहुंचे और कहे आपके घर का दूध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है एक हम पकड़ी हुई गाय छोटी सी पाल देते जो दो ढाई तीन लीटर दूध देगी, वो जो है आपके यहाँ बच्चों के लिए दूध हो जाएगा और उसी से पालन पोषण होगा। तो उसी चक्कर में हमने वहीं से गाय से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय से हमारे यहाँ दूध बढ़ गया काफी, 5 से 6 लीटर के आसपास हो गया।
2: अच्छा।
3: और उसके बाद जो है उसका दही मट्ठा बनने लगा। दही मट्ठा जब बनने लगा तो पड़ोस में देते तो बहुत लोगों को फायदा होने लगा, उसके बाद डिमांड भी आने लगी कि भैया तुम्हारे हुआ मट्ठा बहुत अच्छा है। तो हम कहे भैया ले लिया करो, हम लोग तो घी के उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वही जगह से होने लगा। तो फिर कोविड के समय जो है कोई काम रह नहीं गया, तो उतनी समय हमारी समझ में आया कि इसको गौपालन में किया जाए क्योंकि गाय बहुत उपयोगी है।
2: तो फिर एक से शुरू किया तो कहाँ तक पहुँच गए हैं?
3: इस समय अपने पास जो है करीब लगभग 30 गाय है, बाकी छोटे बड़े मिला 55-60 के आसपास जानवर है।
2: कौन सी नस्ल है?
3: मेरे पास करीब 4 गिर की है, बाकी सब साहीवाल नस्ल के हैं।
2: अच्छा।
3: जिसमें से कुछ हमने अच्छी नस्ल देखी घूमती हुई गाय पकड़ के अपने यहाँ रखे, उसको भी अपने यहाँ

0: तैयार किए, अपनी बच्चिया भी काफी तैयार है
1: और अच्छा उसको भी उत्पादक बना चुके हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सीमेन अपना उपयोग करके जो अपने सरकारी वाले मार रहे हैं, हाँ। उससे साहीवाल की बच्चिया बहुत अच्छी है हमारे पास है।
1: तो ये बताएं कि उनका खान पान कैसे करते हैं सुबह से शाम तक?
0: खान पान तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं पहले थी, तो हम तो वही बाहर से मार्केट से पशुआर खरीद लेते थे और जो दाना पानी आता था वही सब खरीद के खिलाते थे। लेकिन जब तक हम दाना पानी बाहर का उपयोग किए जो मार्केट में आजकल चल रहा, उसके बाद फिर गाय हमारी कोई गाभिन नहीं हो रही।
1: अच्छा,
0: ये समस्या बहुत बड़ी आई। फिर हम एक बार करनाल ट्रेनिंग गए और फिर गवर्नमेंट भेजी थी वहाँ पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में,
1: जी शांति कुंज में।
0: हाँ, शांति कुंज में। तो वहाँ हमने प्रोफेसर लोग बोले कि आप अपना दाना पानी तैयार। जब से हमने अपना दाना पानी तैयार, मेरी गायों की शक्ल बन गई ऐसे की बिल्कुल चमकीली हो गए और उसके बाद गाय मेरी सारी सारी गाभिन हो।
1: यानी पशु आहार खुद बनाते हैं?
0: खुद पशु आहार बनाते, एक मशीन हमने खरीदी 50,000 की और उसी से अपनी दलिया तैयार करते हैं, उसी से अपना पशुआर दाना मक्का सब कुछ उसी से अपना तैयार करते हैं।
1: तो संतुलन क्या रखते हैं, दाना खली और चूनी का?
0: हमारा मानक जो है गेहूं रखते हैं करीब लगभग 30 किलो, और जैसे आजकल गर्मियों में हमने 30 किलो जौ कर दी है,
1: हाँ।
0: और उसके बाद चने की चूनी,
1: हाँ।
0: और इधर थोड़ा वो चोकर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: चोकर है। उसके बाद 1 क्विंटल का मानक बता रहे हैं हम, और 1 किलो मिनरल देते हैं, 1 किलो हमने सादा नमक देते हैं और 1 किलो हम मीठा सोडा।
1: अच्छा,
0: हाँ। और जो है इसी में 5 किलो खली।
1: 100 किलो में?
0: 100 किलो में। तो ये सब बना के हम तैयार करके और बोरियों में 15 दिन का पैक करके वजन के हिसाब से रख देते हैं कि गाय मेरी इतना चारा खाएगी तो इतना हमको राशन इसमें डालना है।
1: तो जो 30 भारतीय नस्ल की गायें हैं आपके पास, उसमें दूध कितना दे रही हैं?
0: दूध मेरे पास इस समय डॉक्टर साहब जो है मेरे पास 14 गाय लग रही हैं, लगभग 85-90 लीटर के आसपास दूध है।
1: हो रहा है?
0: हो रहा है।
1: और आगे जो गाभिन होगी ब्याएंगी?
0: 30 गाय मेरे पास बच्चा देने वाली, जिसमें से मेरी खुद 14 बच्चियां अपने यहाँ की है जो तैयार की साहीवाल गिर, उसमें से देंगी।
1: तो दूध की मात्रा काफी बढ़ जाएगी?
0: दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने प्रोडक्शन के लिए खोया पनीर किसकी तैयारी कर ली है।
1: जो जानवर हैं उनको खुराक कैसे देते हैं, सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार?
0: ये डॉक्टर साहब मानक जो मेरा है करीब 3 से 4 किलो का आसपास एक टाइम हम भूसा दे रहे हैं, और उसी में लगभग 10 से लेकर मतलब वजन के हिसाब से देते हैं जानवर के, लगभग कितना वजन है, 10 से 15 किलो के आसपास हरा चारा,
1: हाँ।
0: ये देते हैं। और जैसे अगर 6 लीटर दूध दे रहे हैं तो उसको हम 2.5 से 3 किलो के आसपास एक टाइम राशन दे रहे हैं। जो गाभिन है उसको 1 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम बस इससे मानक में देते रहते।
1: बहुत बढ़िया।
0: और उसके बाद गाय को खुला छोड़ना।
1: अच्छा,
0: हाँ। जब से हमने उसको खुला छोड़ दिया तब से गाय पूरा एक दूसरे को चाटती है। कहीं हमने सिरावन गांव में पुरानी पड़ी अपने घर पे उसको गाड़ दिए, उसमें रगड़ती रहती है, और उसके बाद पानी पीने के भर दिए, उसके बाद थोड़ा टीन सेट बना दिए, और टीन सेट के बाद जो है अब पूरा हमने खुला रखा करीब 8 विश्वे के आसपास।
1: अच्छा, उसमें घूमती टहलती
0: टहलती रहती है।
1: तो पूरे डेयरी व्यवसाय की बात करें तो ये बताएं कि महीने में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं, और उसको बेचने के बाद आपका मुनाफा होता कितना है?
0: करीब 90 लीटर के आसपास मेरे पास दूध तैयार होता है, तो उसी का हम जो है पूरा मान चले के उसी का दूध पका के करीब मेरे पक के आ जाता है करीब 78-80 लीटर के आसपास दूध लाल पक के तैयार हो जाता है जो मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। उसके बाद उसी में फिर पानी कुछ मिक्स करके मट्ठा तैयार करते हैं, उसी में से मक्खन जाता है, वो 90 लीटर के आसपास मेरा मट्ठा उतना तैयार हो जाता है। और कभी कभी 10 किलो के आसपास निकाल लेते हैं, 80 लीटर मट्ठा तैयार कर 10 किलो दही हम तैयार कर लेते हैं।
1: अच्छा, दही भी बेचते हैं?
0: दही भी लाल मटकी में और दही करके 500 ग्राम 1 किलो की दही भी तैयार करते हैं और दही भी बेचते हैं। तो लगभग ये मट्ठा और दही घी मिला के लगभग में बिक्री जो हो जाती है लगभग 15 से 16 हजार 17 हजार के आसपास पर डे की होती है।
1: पर डे?
0: पर डे की। और जिसमें से हमारे पास करीब 7,000-8,000-9,000 रुपए के गायों के प्रति
1: खर्चा है।
0: खर्चा भी है, लगभग 2 लाख के आसपास मार्जिन आ जाता है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है डेयरी व्यवसाय का इतने कम दिन में, और किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान गाय पाले लेकिन पूरे परिवार साथ मिलके और खुद अपना प्रोडक्शन करे, खुद अपनी मार्केट मतलब अपनी बाजार खुद ढूंढे, दूसरे को न दे बाजार ढूंढने के लिए, तभी आप इससे कुछ बचा पाएंगे।
1: ओम बाबू वर्मा भैया, किसान भाई बहन अभी भी उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर मेरा जो है 70

0: 7080898998 7080898928।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं?
0: हमने कभी सोचा नहीं था, लोग हमारे मित्र जो थे 10 में से 9 लोग तो मना कर दिए कि गौ पालन में आप न जाइए क्योंकि ये घाटे का सौदा है। तो हमने कहा हम कैसे जाने घाटा का सौदा है, हम तो इसको हम घुस के हम देखेंगे एक बार कि घाटा है कि नहीं है, हम क्योंकि घाटा करके हम सीखना चाहते। तो हमारी जिद ने इसमें ले गए और उसके बाद हमने सोच लिया कि हम अपनी मार्केट करेंगे, अपने ग्राहकों के पास पहुंचाएंगे।
1: और आज अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके आप दूध, दही और मट्ठा, साथ में घी भी बेच रहे हैं और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। ओम बाबू वर्मा भैया, आज छोटे बड़े कुल 60 जानवर आपके गौशाला में हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया अपनी खेती पाती में यहाँ कोनो काम हो लेकिन मौसम केरी जानकारी अगर अच्छी हो ना तो काम बहुत बढ़िया बनत है। तो काहे ना दे दिन जाए अपने पंच भैया बहनिन के यहाँ मौसम के रे हाल।
4: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 6 अगस्त से लई के 12 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और कहूं कहूं पर भारी बारिश के चेतावनी है।
3: भैया देखो ये तो हो गए मौसम के हाल, लेकिन अगर कोई पंच भैया बहनी हमका सुझाव भेजा चाहते हैं कार्यक्रम से संबंधित कोनो बात बतावा चाहते हैं तो उके खातिर भी हमार पता नोट कर लें। हमार पता है कार्यक्रम किसान वाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड है 226001। और भैया देखो आजकल है डिजिटल के जमाना तो बहुत से लोग मेल भेजत हैं जो उनकी ज्यादा सहज होते हैं तो बता दो अपन मेल आईडी।
4: तो पंच भाई लिखें FARMANDHOME फार्म एंड होम ARLKO@gmail.com।
3: और भैया देखो कार्यक्रम के समय हो चुका है अब समाप्त, तो लीन जाए अपने पंच भैया बहनी से आज्ञा।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के जरिए गैस उत्पादों को खरीद और सही मूल्य देने की गारंटी देने की कोशिश की गई है।
1: आज जो स्कीम अप्रूव हुई है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें 6 पिलर्स हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस CBD जो गैस बनती है उस गैस के यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफ टेक का पिलर रखा गया, यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने असम में बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश को दिया था उसी संकल्प का विस्तार आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बिना भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की इसी सोच की नई कड़ी घुमंतू विकास बोर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित विमुक्त एवं घुमंतू समाज को न्याय सम्मान और अवसर दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है।
2: ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। घुमंतू जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आरागे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है। पेपर और

और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए व्यापक सुधार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मिश्रा के वकील ने दलील दी कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वे पारिवारिक कार्यक्रमों सहित अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने में असमर्थ हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज 45वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 85 मेघावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए। समारोह

0: 25वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 85 मेघावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटों और बेटियों को समान अवसर मिल रहे हैं। ये समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत है और इससे प्रेरणा लेकर युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मायावती ने लिखा कि पार्टी के प्रति उमाशंकर सिंह की निष्ठा की जितनी भी तारीफ की वो कम है। हर घर तिरंगा के अंतर्गत प्रदेश के 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोजनों को जनभागीदारी के साथ मनाने का निर्देश दिया है। इस श्रृंखला में राजधानी लखनऊ समेत सभी 75 जनपदों में तिरंगा संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रभक्ति के गीतों नृत्यों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली अंतर्गत महुली मंडी के पास एक जर्जर मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने घटनास्थल का मुआयना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
1: 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर है वो बचे हुए हैं। उनकी दुखद घटना है। प्रशासन और शासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खानों में दी जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरा शोक जताया है। वहीं बाराबंकी में भी बारिश के कारण दरियाबाद में भी घर की दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे मलबे में दब गए। हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। भारी बारिश के कारण इटावा और जौनपुर में आज स्कूल बंद रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में इटावा में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी भाग में कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा आज खतरे के निशान को पार कर गई हैं। वहीं अमरोहा में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही और उसके कारण गंगा नदी उफान पर है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अमरोहा में तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। खादर क्षेत्र के खेतों में भी पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। आज तिगरी गंगा का जलस्तर 200.45 मीटर दर्ज किया गया है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में 1,33,357 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: हमीरपुर में बीती रात नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर हो जाने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं झांसी में आज हुई सड़क दुर्घटना में माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार

0: करके हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खुशबू माटी की। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए देवीदास कुशवाहा का गाया हुआ ये देवी गीत।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के झांसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खुशबू माटी की, और अब सुनिए मोहनलाल व साथियों का गाया हुआ ये हास्य लोकगीत।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब सुनिए हरविंद कुमार नीरज व साथियों का गाया हुआ ये साक्षरता पर आधारित लोकगीत।

साक्षरता पर आधारित इस लोकगीत के साथ ही खुशबू माटी की कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है, FM 103 पर।

एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

रमेश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, यह तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने

सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएमडीए के सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालूर हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे।
श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य

विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीटासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। यह विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत पुराने नगमे,

कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, जिसमें आवाज है गीता दत्त की, फिल्म का नाम आर पार।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कस्टमाइज्ड कार्यक्रम।
1: We bring you a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder, Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shahron mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो, एक ब्रॉड पिक्चर कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है। यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए कि ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं। 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज्यादा महिलाएं 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा डॉन्टिंग होते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो घर से ज्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई है। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन है, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के, तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन,

0: सेना।
1: इसके साथ ही फिल्म संगीत पुराने नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है

0: या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज की प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं। एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है। और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली जरूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पे इसके बहुत ज्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो समय पे अपनी वसीयत बनाएं, अपने नाम पे सेविंग्स रखें और चीजों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजन्स केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस।
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं, तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व है। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स

0: हुए उनके लिए जागरूकता प्रसार करना, जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियां उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो, एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाते हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और उसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और जितने आपके सर्कल है उसमें जरूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जेनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन वुमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में, एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली ने हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाईकोर्ट के साथ मिलकर भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है, जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age-friendly India and age-friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कस्टमाइज प्रायोजित

0: कार्यक्रम एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही देर में सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
2: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
3: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, आसाम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। यह 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
4: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
0: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर

0: भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
2: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
3: 19 लाख हाउस होल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
4: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
3: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
1: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
5: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके, उसकी चिंता करते हैं।
1: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा

0: परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गयी।
1: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चार मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9.

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। और आइए अब सुनते हैं फिल्म प्यार ही प्यार का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

यह आवाज थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था प्यार ही प्यार। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है खिलौना। शब्द आनंद बख्शी के हैं और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म खिलौना के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी, जिसमें स्वर एवं प्रस्तुति दीपक शर्मा की, प्रस्तुतकर्ता अंजलि कुमारी।
2: हेलो।

0: आदाब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं इस वक्त आपके साथ आपका अपना दोस्त दीपक शर्मा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो झांसी। दोस्तों, रात के 9:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है महफिल संगीत सजाने का। कहते हैं ना, शाम ढलते ही चरागों को जला रखा है, आपके वास्ते नगमों को सजा रखा है। तो बस पुरानी और नई फिल्मों की कुछ सदाबहार धुनों के साथ आपकी फरमाइशों का कारवां शुरू करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अपनी शाम को सुहानी बनाइए, ख्यालात के रंग घोलिए और हमारे साथ सुरमई नगमों का लुत्फ उठाइए। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सुकून के कुछ हंसी लम्हे चुराने का इससे बेहतर वक्त भला क्या होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, तराने जिंदगी के गुनगुनाने आए हैं, आपके होंठों पे मुस्कान सजाने आए हैं। दीजिए थोड़ी सी जगह अपने दिलों में हमें, हम आपकी पसंद के नगमे सुनाने आए हैं। तो बस अपनी फरमाइशों की फहरिस्त तैयार रखिए और इस रूहानी सफर का मजा उठाइए। तो चलिए अपने दिल के दरवाजे खोलिए और सुरमई यादों के सफर में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और आइए अब आगाज करते हैं आज की इस खास महफिल का और सुनते हैं आज के हमारे पहले कॉलर को। हेलो झांसी में आपका स्वागत है, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर जी, शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी शिवा जी बात कर रहे हैं, कैसे हैं शिवा?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, और आपसे बातचीत हो गई है तो और भी अच्छा लग रहा है सर जी।
0: तो बताइए शिवा, क्या करते हैं आप?
1: सर जी एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ और समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ सर जी।
0: अच्छा जी, और आकाशवाणी झांसी के प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं?
1: जी बिल्कुल सर जी, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है जो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ी है और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम देश और दुनिया के कहीं के भी रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं सर।
0: जी जी जी,
1: मैं ब्लाइंड हूँ और मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ सर जी, जैसे गाय को चारा रखना, पानी रखना, पक्षी को दाना पानी रखना
0: जी,
1: और हर 3 महीने में रक्तदान करना सर जी, और पेड़ पौधे लगाना सर जी, और समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना सर जी।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और देखिए आप भी इतना संघर्ष कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है संदेश है सभी लोगों के लिए।
1: जी सर जी,
0: तो बताइए कैसा मौसम है आपके यहाँ अभी?
1: सर जी देखिए, इंद्रदेव तो जो है मध्य प्रदेश में रूठे हुए चल रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं है और कहीं बाढ़ है तो कहीं पानी नहीं है, तो इस पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और सबसे ज्यादा अन्नदाता परेशान है सर जी, जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ पे भी और जहाँ पानी नहीं गिर रहा वहाँ पे भी।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, बस यही है, ईश्वर से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ अच्छी बारिश हो और लोगों के जीवन में खुशहाली आए, यही कामना हम करते हैं।
1: बिल्कुल, हम हमारा कार्य कर सकते हैं, हम दुआई कर सकते हैं सर।
0: जी जी, तो शिवा जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: मूवी का नाम रहेगा अपना क्या बोलते हैं गोपी किशन, और गाने के बोल रहेंगे किसी को दिल नहीं हो देना ये अच्छा। इससे क्या एक रोग बुरा।
0: जी शिवाजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो झांसी में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्वालियर से बोल रहा था, कल्ली दुबे।
0: तो क्या करते हैं आप?
1: सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ सर, ग्वालियर।
0: तो ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज सर आप अपनी पसंद का कोई पुराना गीत, सावन का महीना चल रहा है तो पुराना गीत सुनवा देना सर। सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और रक्षाबंधन की और 15 अगस्त की शुभकामनाएं आपको और सभी आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोता भाई बहनों को।
0: जी जी, आपको भी हमारी तरफ से सभी त्योहारों की शुभकामनाएं।
1: अब कोई सा अच्छा गीत सुनवा देना लता जी की आवाज में।
0: चलिए लता जी की आवाज में सुनना है आपको। हाँ। ठीक है कल्ली दुबे जी, और कुछ कहना चाहेंगे? आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: सर आकाशवाणी के कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम है सर।
0: अच्छा जी।
1: क्योंकि सर पहले मैं घर पर था ना, तो भैया सुनते थे, तो 1993 से स्टार्ट किया था सर हमने
0: जी,
1: जब से ही लगातार सुनते आ रहे हैं सर।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप काफी पुराने श्रोता हैं और हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा लता मंगेशकर की आवाज में गीत।

0: हेलो, झांसी में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी नमस्ते सर,
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं संतोष जी आप?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ सर।
0: क्या करते हैं संतोष जी आप?
1: सर मैं तो कृषि कार्य से जुड़ा रहता हूँ।
0: चलिए, तो खेती किसानी में क्या चल रहा है इस समय अभी?
1: सर यहाँ पे भी धान की रुपाई चल रही थी और जो हमने खास करके मक्का बोया था सर और उड़द की फसलें ली हुई थी सर, तो उसका मतलब जो खरपतवार जम चुके थे तो उनकी निराई भी कर रहे थे सर साथ में।
0: अच्छा, और बारिश का क्या हाल है?
1: सर यहाँ पे मानसूनी बारिश

0: मतलब लगातार जारी है और अभी एक दो दिन से बारिश तो नहीं हुआ लेकिन आज बारिश हो रहा है सर।
1: अच्छा जी, चलिए तो मौसम सुहावना हो जाता है बारिश के मौसम में।
0: जी बिल्कुल सर, उपयुक्त पानी मिलना चाहिए, खास करके हमारे जो किसान भाई होते हैं ना, लगातार मेहनत करते हैं और ऐसे में यदि पानी ना बरसे तो उनकी उम्मीदें थोड़ी सी टूटती हुई नजर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सावन आया है, बादल भी छाए हैं तो पानी भी बरसेगा, किसी किसी राज्य में भी नहीं पहुंचा है मानसून अधिकतम, लेकिन बारिश होगी ही होगी।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, ये होनी ही चाहिए क्योंकि काफी किसानों को राहत मिलेगी उससे।
0: जी बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों ने मतलब उम्मीद अभी भी लगाई हुई है और उनकी उम्मीद इस सावन में जरूर ही पूरी होगी, सावन भी चल रहा है और बारिश भी जरूर होगी सर।
1: जी जी, तो संतोष जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मूवी का नाम है सर अपना देश, मूवी का गाना सुनना है मुझे।
1: अच्छा, गाने के बोल?
0: इसका ये वाला गाना है सर, सुने चंपा सुने तारा, कोई जीता कोई हारा, अरे बड़ा मजा आए सुनो सुनो मेरी बात, अरे झूमे नाचे आज सारी सारी सारी रात, सुन री चंपा सुने तारा, ऐसा करके सॉन्ग है सर।
1: क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो झांसी में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर राजस्थान जोधपुर से मनोहर चितारा बोल रहा हूँ जी।
0: जी मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप मनोहर जी?
1: बस सर एकदम बढ़िया है, और पहली बार कॉल लगा इस प्रोग्राम में मेरा।
0: अच्छा जी, तो ये बताइए क्या करते हैं मनोहर जी आप?
1: सर मैं डिग्राफ का काम करता हूँ जोधपुर में
0: जी।
1: तो लेदर लेदर का काम होता है
0: जी,
1: ये फर्नीचर के सोफे वगैरह बनते हैं, उसका काम है मेरा।
0: अच्छा जी, खुद ही हाथों से आप कारीगरी करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट है तो हाथों का ही काम है सर।
0: जी जी, चलिए बहुत अच्छा है। बहुत ये मतलब कलाकार हैं आप, चीजों को
1: जी सर
0: स्वरूप देते हैं, बढ़िया अच्छा बनाते हैं डिजाइन।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी जी।
1: और सर बिल्कुल हमारे जोधपुर के और बातें बताना चाहूंगा कि जोधपुर में हमारे एक तो मिर्ची वड़े बड़े फेमस है जोधपुर के, मावे की कचौरी है, और यहाँ की दाल बाटी चूरमा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है सर।
0: जी जी, वो तो प्रसिद्ध है ही, सही है। और बताइए कैसा मौसम है आपके यहाँ?
1: सर अभी तो मौसम बहुत ही अच्छा है, अभी 2 दिन पहले बहुत तेज बारिश थी, आज हल्का धूप खुला हुआ है।
0: अच्छा जी,
1: लेकिन अब की बारिश थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक दो बारिश बहुत अच्छी हुई।
0: जी जी जी, कहीं कहीं जगह पे बहुत ज्यादा बारिश है, कहीं कहीं पर कम है। और
1: बिल्कुल सर ऐसा है कि राजस्थान में तो बिल्कुल इतना मानसून नहीं आया जितना आना था, फिर भी थोड़ा बहुत बारिश हुआ, मतलब गर्मी से राहत मिल गई लोगों को।
0: चलिए सही है, और उम्मीद करेंगे कि अच्छी बारिश हो। तो बताइए मनोहर जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: दीपक जी, बस मेरी फरमाइश, पिक्चर का नाम पेंटर बाबू है
0: जी,
1: गाने के बोले ओ मेरे सजन बरसात में आ।
0: अच्छा, ओ मेरे सजन बरसात में, बरसात का गीत सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सर, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो
0: बहुत अच्छी फरमाइश है आपकी, तो जरूर आपको आपकी फरमाइश पर सुनवाया जाए।

0: हेलो झांसी में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
0: जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या नाम है आप?
1: सर बढ़िया है सर। मैंने सोचा कि लगाए फोन आज झांसी में, पहली बार लगा मेरा फोन इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेलो झांसी।
0: जी क्या शुभ नाम है आपका?
1: जी मैं हूँ दसपुर रेडियो श्रोता संघ जिला मंदसौर तहसील शामगढ़ मध्य प्रदेश से राधे राधे श्याम टेलर बात कर रहा हूँ सर।
0: राधे श्याम जी बात कर रहे हैं मंदसौर से?
1: जी सर।
0: जी तो राधे श्याम जी कैसे हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी सर अभी तक तो बढ़िया है, और मैं यहाँ शामगढ़ में सिलाई का भी काम करता हूँ और रेडियो भी सुनता हूँ सर।
0: जी जी जी, और कैसा है आपके यहाँ मौसम का मिजाज?
1: जी मौसम का मिजाज तो काफी सुहाना मौसम है, ऐसा लग रहा है कि कहीं जाए घूमने फिरने।
0: अच्छा जी, फुल आप इंजॉय कर रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। आपको आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: जी आकाशवाणी झांसी के तो नंबर वन कार्यक्रम लगते हैं सर सभी, जिसके ना फिल्म संगीत और हेलो झांसी और युवाणी, ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी सर सभी, पहले तो मैं सभी श्रोताओं को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा
0: जी।
1: और हाँ सर, पहली बार लगा मेरा कॉल इस कार्यक्रम में।
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो राधे श्याम जी गीत बताइए कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, पहले मेरे भाइयों का नाम बोल दूं?
0: जी बोलिए बोलिए।
1: जी राधे श्याम टेलर, छोटू टेलर, मोहनलाल टेलर, मंगलम टेलर और समट टेलर परिवार, और एक है मेरे उज्जैन के लोकेंद्र वर्मा जी, वो भी इसी गीत को सुनना चाहेंगे। फिल्म का नाम है धर्मात्मा। क्या खूब लगती हो तेंदों, बड़ी सुंदर दिखती हो तेंदों, फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सत्य।

0: सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो तन, बड़ी सुंदर दिखती हो।
1: बहुत अच्छा लगा राधेश्याम जी आपसे बात करके, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो झांसी में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: ये नमस्कार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हे उड़ले उड़ले उड़ले ओ उड़ली उड़ली उड़ली ये।
0: क्या
1: नमस्कार
0: बात है
1: सर जी, मैं राम रतन राजपाल बोल रहा हूँ।
0: राम रतन जी बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं राम रतन जी?
1: ये मैं मऊरानीपुर झांसी से बात कर रहा हूँ।
0: बहुत अच्छा गाया आपने। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, दुआएं हैं आप सबकी।
0: अच्छा जी, और बताइए क्या करते हैं राम रतन जी आप?
1: और मैं टीचर हूँ माध्यमिक में।
0: अच्छा जी, सरकारी टीचर हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाते होंगे आप, इसी अंदाज में?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए सही है। और क्या, थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग होना चाहिए पढ़ाने का तरीका।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी इंटरेस्टिंग के साथ में खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी
0: जी जी जी
1: जो है तालमेल बना रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए राम रतन जी, आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आप?
1: आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम जब भी समय मिलता है
0: जी
1: तो मैं खूब सुनता रहता हूँ। आपके शाम को जो कार्यक्रम आते वो भी सुनता, लोक लंगे वाले सुबह तो मैं सुनता ही हूँ
0: जी।
1: और एक गीतकार एक फनकार ये सारी चीजें मैं सुनता रहता हूँ। सबसे अच्छा स्वास्थ्य का जो चर्चा आती है मैं बड़े अच्छे से सुनता हूँ उसको, कृषि वाला।
0: बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो ये बताइए राम रतन जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: चलते

0: मैं यही गाना सुनना चाहता हूँ सर
1: जी। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा गाया है आप। और आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। चलते

0: शामें ढलती हैं, खूबसूरत लम्हे बीत जाते हैं और अब वक्त हो चला है आज के हमारे इस कार्यक्रम हेलो झांसी की सुहानी महफिल को यहीं विराम देने का। दोस्तों, उम्मीद है आज के ये ढलते हुए साए और आपकी फरमाइशों का ये सिलसिला आपके दिलों को छू गया होगा। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा, अलविदा कहने से मोहब्बत कम नहीं होती, सच्चे नगमों की खनक कभी मध्यम नहीं होती। दोस्तों, अगर आज आपकी पसंदीदा फरमाइश रह गई है तो मायूस मत होइए, आप भी इस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक रविवार और बुधवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0510-232-0068। जी हाँ, 0510-232-0068। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़े रह सकते हैं। आकाशवाणी झांसी के आधिकारिक पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते और अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो गए हैं तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वो कृपया 1 महीने बाद ही हमें कॉल करें, ताकि हमारे और भी श्रोताओं को कॉल करने का मौका मिल सके और वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकें। तो दोस्तों, फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर सुनेंगे आपकी फरमाइशी गीतों को और सुनेंगे आपकी दिलचस्प बातों को। तो मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना ख्याल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: हेलो।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी, जिसमें स्वर एवं प्रस्तुति थी दीपक शर्मा की, प्रस्तुतकर्ता अंजलि कुमारी थी। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही देर में सुनिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूं की शब्द रचना, धुन बनाई नौशाद ने, फिल्म का नाम आदमी।

मेरे महबूब सुनिए। इस फिल्म में लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत, जिसके बोल लिखे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई नौशाद ने।

और अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र की शब्द रचना, जिसकी धुन तैयार की शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम प्रोफेसर।

श्री 420। सुनिए इस फिल्म में शैलेंद्र की शब्द रचना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश व साथियों की आवाजों में, जिसकी धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

श्री 420 फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज के कलाकार हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहरा चरियाली से

0: तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज टू द national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said